0: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज
1: ही। राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di entry cases nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

आज की दुनिया में मुझे लगता है दोस्तों एक चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझने की बहुत जरूरत है कि इस दुनिया में हर इंसान आपसे प्यार नहीं करता है। आप कोशिश करते हैं कि यार ये बंदा जितना मुझे इससे मोहब्बत है ऐसे भी मुझसे हो जाए, बट ऐसा होता नहीं है। कुछ लोग आपसे उतना ही प्यार करते हैं, आपको उतनी ही अटेंशन देते हैं जितना उन्हें आपसे फायदा है। अपनी कीमत हमेशा उतनी ही रखी है जितनी सामने वाला चुका सकता है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा दी गई इज्जत ना सामने वाले का दूसरे बंदे का अहंकार बन जाती है, उसका ईगो बन जाती है, उसे लगता है कि यार मैं तो बिल्कुल टॉप क्लास इंसान हूँ कि ये बंदा जो है ये मेरे पीछे है और मेरे आगे पीछे करता रहता है, मुझे इतनी अटेंशन देता है। आपके इमोशन को वो दूसरी तरह से डाइवर्ट कर देते हैं, ये नहीं सोचते वो कि ये बंदा यार मुझसे बहुत अटैच है ना। तो बहुत जरूरी है कि उस ईगो को संभाला जाए, सामने वाले की ईगो को बैलेंस रखा जाए, और इसलिए इसके लिए काम जो है वो नहीं करेगा, आपको करना पड़ेगा। दूसरों को उतना ही दीजिए, उतना ही एफर्ट, उतनी ही इज्जत जितनी वो डिजर्व करते हैं। उससे ज्यादा देंगे तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका है, सिर्फ आपका। आइए एक और ट्रैक के साथ आपको आगे लेकर चल रही हूँ, उसे भी सुनिए और इन शानदार बातों के साथ मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हाँ ये बातें जो है ये आपको आपसे ज्यादा कनेक्ट कर रही है। मिलती हूँ इस ट्रैक के उस पार, कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी।

0: वेलकम बैक, इट हैपेंस में सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं बहुत ही खूबसूरत इस वक्त कुछ ऐसे हमारे जज्बात, हमारी बातें जो आपके इस मॉर्निंग को आपके लिए खास और स्पेशल बना रही हैं। क्योंकि यार जिंदगी को जितना ज्यादा हम समझ पाते हैं, और जिंदगी को समझने से मतलब है हमारे आसपास के लोग और हमारी फीलिंग्स को समझना, राइट? सो जितना ज्यादा हम इन चीजों को समझ पाते हैं, उतना ज्यादा शायद हम अपनी लाइफ पर, अपनी जिंदगी पर, अपने सपनों पर और अपने रिश्तों पर काम कर पाते हैं। अच्छा, रिश्तों से याद आया कि कुछ लोग जब आप चुप होते हैं तो आपकी खामोशी को गलत समझ लेते हैं। वो ये कहते हैं कि यार ये चुप है तो जरूर इसकी गलती होगी, है ना। एक इंसान जो चीखता चिल्लाता है लोग उसे हमेशा अटेंशन देते हैं, या ये कहें वो अटेंशन खींचता है लोगों की। लेकिन वो इंसान जो चुप है उस पर लोग ध्यान नहीं देते, उल्टा उसको गलत समझ लेते हैं। बट हर खामोशी गलती तो नहीं हो सकती ना। कभी कभी हम चुप इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि हम रिश्ते बचाना चाहते हैं, हम एक इंसान को खोना नहीं चाहते। हमें पता है कि अगर हमें पलट के जवाब दिया तो बात और बिगड़ेगी, और इसलिए हम चुप हो जाते हैं। कभी कभी हम एक सिचुएशन को संभालना चाहते हैं, हम इसलिए चुप हो जाते हैं, है ना। कुछ रिश्ते हमें लगता है कि हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में है, हम इसलिए चुप हो जाते हैं कि अगर हो सके तो हमारी, अगर चुप रहने से वो रिश्ता बच सकता है या वो बात संभल सकती है तो चुप रह जाना बेहतर है, हम इसलिए चुप हो जाते हैं। तो हाँ, हर चुप्पी जो है वो गलती नहीं होती। आप किसी के चुप रहने से आप उसे गलत अगर ठहराते हैं तो ये आपकी गलती है। एक और ट्रैक सताक्षी के साथ, और सुनते रहिए इट हैपेंस सताक्षी के साथ। यूं ही बने रहिए और एंजॉय करते रहिए कुछ बहुत ही खूबसूरत और प्यारे मॉर्निंग ट्रैक्स मेरे साथ।
1: सारे सुनो सुनो, स्टार्ट होने लगा

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज एंड associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks Atanya, I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: साइकिल।
1: लाइफ में एक बात याद जरूर रखिएगा और हम सबको याद रखनी चाहिए कि वो इंसान जो हमें सबसे ज्यादा प्यार करता है, जो हमें सबसे ज्यादा अटेंशन देता है, उसे हमें कभी इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि जब एक ऐसा इंसान जो आपसे सच्ची मोहब्बत करता है, आपको हमेशा अटेंशन देता है, आपकी केयर करता है, वो बदलता है ना, तो फिर वो पूरी तरह से बदल जाता है। वो अपनी सेल्फ वर्थ को समझ कर बदलता है, उसे अपनी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाती है। वो ये समझ जाता है कि यार मैंने इस बंदे को शायद अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़े इमोशंस दे दिए, लेकिन पलट के इस रिश्ते में मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। और ऐसा इंसान जब बदलता है या वो आपको छोड़ता है, तो आप उसे कितना भी मना लें, वो पहले की तरह फिर आपका नहीं हो पाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि सामने वाले की मोहब्बत को या उसका जो केयर है आपके लिए, उसका जो अटेंशन है आपके लिए, उसे जरूर समझिए और उसे इग्नोर मत कीजिए। क्योंकि आज आप इग्नोर कर रहे हैं, फिर अगर कल उसने इग्नोर करना सीख लिया, तो आप एक ऐसा साथी जो है वो खो देते हैं, एक ऐसा इंसान अपनी जिंदगी से खो देते हैं जो आज के टाइम पर आपसे वाकई सच्चा मोहब्बत करता था, सच्ची दिल से आपको केयर करता था और सच्चे दिल से चाहता था, है ना। तो हमेशा जो इंसान आपके लिए है, उसकी उसकी इम्पोर्टेंस को समझिए, उसको इग्नोर करके अपना नुकसान मत कीजिए। एक और ट्रैक साक्षी के साथ सुनिए और सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो प्रिस्फानी 107.01 एम पर।

कभी कभी आप ऑनलाइन होते हैं और नाराजगी में आप एक बंदे को जो है वो रिप्लाई नहीं करते, वो आपका टाइमिंग चेक करता है कि आप कुछ देर पहले तो ऑनलाइन थे, आपका ब्लूटिक चेक करता है कि उसका मैसेज तो डिलीवर हो गया बट कोई रिप्लाई नहीं आया। इंतजार करते करते एक इंसान थकने लगता है और थक कर धीरे धीरे एक दिन वो आपसे दूर चला जाता है और फिर जो आपका सो कॉल्ड ईगो था या जो आपको लग रहा था कि हम भाव खाते रहेंगे अकेले और ये हमें मनाता रहेगा, वो ईगो और वो आपके जो भ्रम है जिस इल्यूजन में आप जी रहे थे वो दोनों एक साथ टूट जाते हैं। आपको समझ में आता है कि यार अब हमें मनाने कोई नहीं आने वाला, अब हमें अटेंशन नहीं मिलने वाली क्योंकि ये बंदा तो हमसे दूर जा चुका है। और उसके दूर जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भाई उसे जिंदगी में कोई और मिल गया है। अब वो ये समझ चुका है कि वो एक ऐसे रिश्ते में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है जहां पर उसकी आपने कोई वैल्यू ही नहीं की, जहां पर आप उसे हमेशा नीचे गिराते रहे, जहां आपने उसे हमेशा अपने पीछे भगाया। और जब वो इंसान वाकई आपके दिल से दूर हो जाता है फिर आपको आज के टाइम पे चाहने वाला वैसा दूसरा मिलता नहीं है, क्योंकि भाई मोहब्बत एक ही बार बड़ी मुश्किल से मिलती है ना। तो बस इस मोहब्बत का ख्याल रखिए, उस बंदे का ख्याल रखिए और उस बंदे की रिस्पेक्ट कीजिए। यार रिस्पेक्ट से बढ़कर एक रिश्ते में और कुछ नहीं होता। मैं कहती हूँ जहाँ रिश्ता रिस्पेक्ट का है वहां मोहब्बत हो जाती है, और जहां मोहब्बत है और अगर रिस्पेक्ट नहीं है ना तो वो रिश्ता खराब हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं एक और ट्रैक के साथ, इंजॉय कीजिए और सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस जीआरए डिब्रिस्वानी 1701 एम पर।

देखिए भाई, दिन शुरू करने जा रहे हैं आप, और इस दिन के साथ जरूर आप अपने दिन की एक बेहतरीन शुरुआत का आगाज भी सोच रहे होंगे। लेकिन बेहतरीन शुरुआत लाइफ की और जिंदगी की और दिन की तभी होती है जब आप उसे बेहतर बनाने के लिए एफर्ट्स करते हैं। देखिए, सिर्फ सोचते रहने से कुछ होता नहीं है, है ना। तो काम भी करना पड़ता है, एक दूसरे को समझना भी पड़ता है, अपने आप के साथ कुछ प्रोमिसेस भी करने पड़ते हैं। आपकी जो आपकी लाइफ को लेकर एफर्ट्स हैं उनके लिए प्लानिंग सिर्फ करने से नहीं होता भाई, उनको एक स्ट्रक्चर देना पड़ता है, उन पर काम करना पड़ता है, उस काम को, उस प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको हर रोज जो है दिन की शुरुआत के साथ करनी है अगर आप वाकई अपने काम को और बेहतर करना चाहते हैं। ठीक है जी, तो ख्याल रखिए अपना और अपने सपनों का। आइए आगे लेकर चलते हैं आपको एक और गाने के साथ। सुनिए और सताक्षी के साथ यूं ही सुनते रहिए।

दोस्तों अब आ गए हैं हम इट हैपेंस के उस मुकाम पे जहां आज एक बार फिर से आपको छोड़कर जाना पड़ेगा। है मतलब बड़ा बुरा मोमेंट होता है यार ये, जब मुझे प्रोग्राम को खासकर इट हैपेंस को वाइंड अप करना पड़ता है। बट यस शो है, वाइंड अप तो करना पड़ेगा, लेकिन ये अच्छी बात है यार कि आज के शो को वाइंड अप करेंगे तो फिर

ਸਸ਼ਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਸ਼ੋਲਕ ਸ਼ਰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਵਾਨੀ ਵੰਸਾ ਨੂੰ ਆਨੇ ਤੇ ਜਿਵੇਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹਮ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਲਏ उधर भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को गणतंत्र दिवस हॉल में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में कई हस्तियों को पद्म पुरस्कार सम्मानित किया। इस दौरान पंजाब की तीन हस्तियां भी पद्मश्री अवार्ड के साथ सम्मानित की गई। इस साल सम्मानित होने वाले में संत निरंजन दास जी का नाम शामिल है जिन्होंने पद्मश्री अवार्ड के साथ नवाजा गया। इसके साथ ही चंडीगढ़ के रिटायर्ड डीआईजी इंद्रजीत सिंह सिद्धू को भी उनकी सेवाओं बदले इस वकारी सम्मान के साथ सम्मानित किया गया। खेड जगत में अपना नाम बनाने वाली हरमनप्रीत कौर को भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वालों पद्म श्री अवार्ड के साथ भेंट किया गया। जिक्रयोग है कि पद्म पुरस्कार जेतुआ का ऐलान हर साल गणतंत्र दिवस से किया जाता है। इस साल 131 शख्सियतों को पद्म पुरस्कार ऐलान किया गया। 131 में से 5 को पद्म विभूषण 13 को पद्म भूषण 113 को पद्म श्री के लिए ऐलाना गया। उधर पाकिस्तान के बलोचिस्तान सूबे विच फौज नूं निशाना बना के वड्डा हमला किया गया। बलोच लिबरेशन आर्मी ने क्वेटा छावनी रेलवे स्टेशन दे बहरवार चमन फाटक नेड़े एक फौजी शटल ट्रेन ते होए भयानक हमले की जिम्मेवारी ली है। इस हमले में 82 पाकिस्तानी फौजी मारे गए ते 121 तो वध गंभीर रूप दे नाल जख्मी होए। बीएलए दे बुलारे जियंद बलोच अनुसारे हमला उन्हां दी मजीद ब्रिगेड ते खुफिया विंग जिराब द्वारा किया गया। एक बहुत ही गुंजलदार अते संगठित ऑपरेशन से संगठन ने दावा किया है कि इस हमले नूं मजीद ब्रिगेड दे फिदाई कमांडर बिलाल शाह ने जिन्हां नूं साहिन वजों भी जाणिया जांदा है ने अंजाम दिता। उधर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला वायरस तेजी के पैर पसार रहा जिस कारण विश्व सेहत संगठन ने गंभीर चिंता जाहिर की है। डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने दस्या कि देश में निगरानी वधाने तो बाद हुण तक 900 तो वध शक मामले पछाणे गए हैं जिन्हां विचों 101 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इस बीमारी का मुख्य केन्द्र इटूरू सूबा बनिया होया जिथे लगभग 50 लाख लोग रह रहे हैं। उन्होंने अनुसार इस खेत्र में चल रहे हथियारबंद संघर्ष कारण हालात बहुत नाजुक हैं। इत्थे हर 4 विचों एक व्यक्ति नूं मानवतावादी सहायता की लोड़ है ते हर 5 विचों एक व्यक्ति बेघर हो चुके हैं। लगातार हो रही हिंसा कारण सेहत कर्मचारी ते मानवतावादी वर्कर इलाका छड्डण लई मजबूर हो गए ने। इस कारण संक्रमित लोगों की भाल करन ते उन्हां दा समय सिर इलाज करन विच भारी मुश्किलां आ रही हैं। असुरक्षा ते डर कारण भाईचारिआं विच मदद करन वालीआं टीमां प्रति बेविश्वासी भी वध गई है। खतरे नूं देखते हुए डब्ल्यूएचओ ने 16 मई नूं कांगो ते गांटा विच फैले बुंडीबिग्यो वायरस नूं अंतरराष्ट्रीय चिंता दी जनतक सेहत एमरजेंसी ऐलान दिता सी। उधर दूजे पासे भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फर्जी वकीलों और कॉकरोच जनता पार्टी नाल जुड़ियां गतिविधियां दी जांच दी मांग वाली याचिका नूं तुरंत सुनवाई करन तों इनकार कर दिता है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ते जस्टिस जॉय मल्या बागची दी बैंच ने याचिकाकर्ता पक्ष वल्लों पेश होए वकील वीएन गोस्वामी नूं कहा है कि इस मामले नूं इन्ने भावुक तरीके ना लैण। वकील गोस्वामी ने दलील दिंदिया कहा है कि चीफ जस्टिस वालों स्पष्टीकरण देने तों बाद भी जानबुझ के गलत अते झूठियां गल्लां फैलाईयां जा रहीयां हन। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि इस मामले नूं इन्नी भावुकता नाल ना लो। इस दौरान उन्होंने होर भी बहुत सारियां गल्लां कीतीयां। इस दौरान एक होर वकील ने कानून दीयां फर्जी डिग्रियां दे मामले विच सीबीआई जांच की मांग भी कीती। उधर पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दी जे गल करिए तां भगवंत सिंह मान ने कुत्तियां नूं मारन दे बयान संबंधी दायर पटीशन नूं सुप्रीम कोर्ट ने उन्हां दी नूं खारिज कर दिता है। पटीशन विच कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने हुक्म नूं गलत ढंग नाल पेश कीता। उन्हां ने एक गुमराहकुन करन वाली गल फैलाई कि अदालत ने कुत्तियां नूं मारन दी खुली छूट दे दित्ती है। इस ते सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जेकर मुख्यमंत्री कोई बयान दिंदे हन तां की असीं अपना हुक्म बदल दईए। अदालत ने स्पष्टीकरण
अदालत ने पटिशनर नू हाई कोर्ट तक पहुंच करन लई कहा है। जस्टिस विक्रमनाथ ते संदीप मेहता दे बैच ने पटिशनर दीयां दलीलां सुनन तो इनकार करते हुए कहा है कि हाई कोर्ट हुक्म दा सख्ती नाल पालन करन लई हाई कोर्ट नू जिम्मेवारी सौंपी गई है। तुसी उत्थे जाओ, सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिन पहला कुत्तियां नूं लेके दायर पटीशन विच आखरी फैसला सुनाया सी, जिस विच अदालत ने कहा सी कि खतरनाक ते रेबीज तो प्रभावित आवारा कुत्तियां नूं टीके लगा के मारिया जा सकता है। मनुखी जाना दी रक्षा करना जरूरी है ते सन्मान नाल जीउण विच कुत्तियां दे डर तो मुक्त रहण दा अधिकार शामिल है। इस तों बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट किया कि सुप्रीम कोर्ट दे हुक्मां दा पालन करनगे, कुत्तियां नूं हटा दिता जाएगा। तां हुण तक दे अहम खबरां विच बस इना ही। खबरां दी वधेरे जानकारी ते सुझाव देण दे लई तुसीं साडे नाल जुड़ सकते हो, संपर्क कर सकते हो, तो सानूं ईमेल भी कर सकते हो। साडी ईमेल आईडी bisoni@bisoni.com। इस दे नाल ही तुसीं साडे नाल साडे फेसबुक पेज दे जरिए भी जुड़ सकते हो। साडा फेसबुक पेज है रेडियो bisoni 1071। हाजिर होवांगे ताज़ा तरीन खबरां लेके। तकले दी इजाजत, सत श्री अकाल।

0: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
0: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनु असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नु बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नु दान विच दे दियो। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
2: सम नंबर्स कैरी वेट बियॉन्ड व्हाट यू सी। Q11700 द मास्टर नंबर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन। अ हेरिटेज क्वींसलैंड प्लेट फर्स्ट इश्यूड इन 1922। अ पीस ऑफ क्वींसलैंड हिस्ट्री विद फुल प्रोविनेंस। ओन्ड आउटराइट। ट्रांसफर रेडी। For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
3: Na tere varga aashiq vekhya, na tere vargi aashiqui.
4: ARY Films and Salman Iqbal present Love This Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love This Song in cinemas this Eid-ul-Azha, May 27th.

वेलकम आदाब जी, सत श्रीकाल जी। तुसी बने हुए हो जी थोड़े अपने चहेते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.1 FM ते जी आरचे संदेश अलग दिनाल तुसी बन चुके हो। ढेर सारिया गल्लां करन दा साडा बहुत ही सोहना जिहा वेला इह शुरू हो चुका है जी। ते इस वेले दे दौरान असी गल्लां भी बहुत सारिया करनिया ने, ते तुसी साडे नाल जुड़ना जरूर है, हिस्सा साडा जरूर बनना हैगा इस प्रोग्राम दा। सोहने चेदा जुड़ना किवें है, रेडियो बसवानी 101.1 FM साडा फेसबुक पेज है जी, ते bisswani@bisswani.com साडी ईमेल आईडी है। सरिया तुहानूं जिहड़ा चंगा लगदा तुसी अपना लो, पर साडा गल्लां बातां देखो जरूर जरूर जरूर करते रहा करो। ता फिर चलो गला काड़िया तुसी शुरू करो, ते मैं हुणे वापस आउनी आ। तुसी अपना फोन चको साडे नाल जुड़न दे लई, ते मैं आउनी आ एक गीत सुना के थोनू वापस।

हां जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101 एम ते जी आर छे संदेश अलग दे नाल तुसीं बने होए हो। देखो कुछ फिल्मां अपने समय तो काफी अग्गी हुंदियां ने जिन्हां दियां कहानियां दहाकियां पहलां लेखक लिख गए सी पर अज भी दर्शक उन्हां दे नाल जुड़ाव हैगा जिहड़ा एक महसूस करते ने। उन्होंने ये अपने नेड़े तेड़े फीलिंग हुंदा लगता है उन्होंने। हिंदी सिनेमा विच उंज तां कई चर्चित कहानियां नॉवल ते फिल्मां बनियां हैगियां ने पर असी ना अज कुछ हिट नॉवल से बनिया सुपर हिट फिल्मां दे बारे विच गल करांगे जिन्हां ने समाज सिस्टम नूं चुनौती दित्ती इंसानी सोच हिम्मत दा सबक सिखाया। इन्हां फिल्मां दी वजह नाल बॉक्स ऑफिस भी खूब गुलजार होए। दस दिए इन्हां बारे एक एक करके पर पहला सुनो तुसी एक गीत।

0: नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
0: सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

जी वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत स्वागत है जी थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.1 AM ते जी आज संदेश अलग दिनाल तुसी पाने होए हो जी। मैं हुणे कहा सी ना इन्हां गीतां तों पहलां कि सिनेमा दा साहित्य नाल गहरा नाता हैगा। बिना साहित्यक टच दे शानदार फिल्मां ते गाने बनाउण दी कल्पना नहीं कीती जा सकती। तुसी वी ना कदे अजिहियां फिल्मां देखियां होणगियां जो किसी ना किसी कहानी नॉवल तो प्रेरित होण पर तुसी उन्हां दे बारे विच ना जानदे हो, तां मैं सोचा कि क्यों ना उन्हां ब्लॉकबस्टर नॉवल ते बणियां फिल्मां बारे दसा एक एक करके। जिवें तुहानूं पहलां कहा ना कि जिन्हां ने यादगार लम्हे बना दिते। हुणे हुणे जे दी गल नहीं करनी, जे तुसी सोचो कि मैं सिर्फ 2020 तों बाद वाले दी गल करूं, 60s दे विच वी चलांगे आपां, 16 दी वी गल करांगे, 60s दे विच उस बारे भी गल करांगे ते गल ताजी ताजी भी करांगे, हर लेवल दी गल करांगे। पर पहला सुनदे आ एक गीत।

0: की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे, उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। उमसोग, caring with dignity।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर, द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

रोमांटिक फिल्म आर के नारायण दे मशहूर नॉवल ते बनी एक मास्टरपीस है की है। फिल्म नू विजय आनंद ने डायरेक्ट किया सी ते उन्होंने भाई देवानंद ने इस विच राजू गाइड का यादगार किरदार निभाया सी। फिल्म की कहानी राजू ते रोजी राजू यानी कि देवानंद ते रोजी यानी कि वहीदा रहमान दे इर्द गिर्द घूमती है जिस विच एक टूर गाइड नू एक मैरिड डांसर दे नाल प्यार हो जाता है तो उन्होंने जिंदगी पूरी तरह दे नाल बदल जाती है। इस विच एक दिलचस्प गल भी होंदी है, उस दिलचस्प गल बारे मैं तुहानू जरूर दसना है, पर पहला मैं सोच रही है कि थानू एक गीत सुना देनी है।

0: में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: जी अनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसोनी 107.1 FM ते जी आरचे संदेश अलग दिनाल सी बने होयो। हुणी गल कर रही सी ना मैं देवानंद दी मूवी दी ते उना दे दिलचस्प गल दी गल कर रही सी ना मैं। उस कहानी दी दिलचस्प गल ए सी कि इस फिल्म दा एक अंग्रेजी वर्जन भी बनया सी जिस नू पर्ल एस बर्क ने लिखिया सी पर देवानंद दी सलाह दे बावजूद उस विच वहीदा रहमान नू नहीं लिया गया। फिल्म अपने समय तो काफी अगे सी। फिल्म दी पॉपुलरिटी दा अंदाजा तुसी इस गल तो लगा सकते हो कि रिलीज दे 42 साल बाद 2007 इस नू कांस फिल्म फेस्टिवल विच दुबारा दिखाया गया। अवार्ड मामले विच तां गाइड ने इतिहास ही रच दिता सी। गाइड फिल्म फिल्म फेयर दे इतिहास विच पहली अजिही फिल्म बनी जिसने चार वड्डे अवार्ड बेस्ट फिल्म बेस्ट डायरेक्टर बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस अपने नाम लिखा। एस डी बर्मन का संगीत लता मंगेशकर दे गाए गाने अज भी लोगों की जुबान से रह गए। इन्ना नहीं इस ऑस्कर के लिए भी भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में भेजा गया। टाइम मैगजीन ने भी इस बॉलीवुड की टॉप क्लासिक फिल्मों की लिस्ट में शामिल किया।
1: एक दो गल्लां करनियां सी थोड़ी जिंदगी वास्ते ठीक रहणगियां क्योंकि मेरी जिंदगी च मैं चीजां सिखियां तो तुहानूं दसणियां मेरा फर्ज़ है।

0: ਐਂਟਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਿੱਟ ਭੇਜਾਂਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ QLD ਖੋਜੋ ਜਾਂ 132 ANT ਯਾਨੀ ਕਿ 132-268 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
0: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
2: सम नंबर्स कैरी वेट बियॉन्ड व्हाट यू सी। Q11700 द मास्टर नंबर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, अ हेरिटेज क्वींसलैंड प्लेट फर्स्ट इश्यूड इन 1922, अ पीस ऑफ क्वींसलैंड हिस्ट्री विद फुल प्रोविनेंस, ओन्ड आउटराइट, ट्रांसफर रेडी। For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
3: Na tere varga aashiq vekhya, na tere vargi aashiqui.
4: ARY Films and Salman Iqbal present Love This Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love This Song in cinemas this Eid ul Azha, May 27th.
2: Beyond what you see, Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate. First issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance. Owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number.
5: Oye Rahul, vire tere case da ki hoya?
6: Oh yara, main bahut worried haan. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
5: Go for the best vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
6: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
5: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

सोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

बहुत स्वागत है जी थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 101 ते जी आरजे संदेश अलग दे नाल तुसी बने होए हो। हुण गल करदे आ 2000 दी साल दी साल दी संजय लीला बंसाली की गल करते हैं। तो संजय लीला बंसाली की ना साल 2002 विच आई सी फिल्म देवदास। कौन नहीं जानता देवदास नूं। देवदास ना शरद चंद्र चट्टोपाध्याय दे नॉवल ते बनी है। इस शाहरुख खान दे नाल ऐश्वर्या राय दे माधुरी दीक्षित ने लीड रोल निभाया सी। कहानी देवदास यानी कि शाहरुख खान दे इर्द-गिर्द घूमदी है जो अपनी पढ़ाई पूरी कर लंदन तो लौटते ने ताकि अपनी बचपन की दोस्त पारो यानी कि ऐश्वर्या नाल ब्याह कर सके। पर जद उसका परिवार इस रिश्ते नूं ठुकरा दिंदा है ना तां ओ गम विच ना डुबके शराब दा सहारा लैंदे ने। बर्बादी दी वल वधदे होए देवदास नूं चंद्रमुखी यानी कि माधुरी दे कोल सुकून तां मिलदा है पर पारू तों विछड़न दा दर्द उहनां दे अंदर ही अंदर उस नूं खत्म कर दिंदा है। 5 करोड़ विच बनी इस फिल्म ने उस समय दे विच साल 2002 दे विच 168 करोड़ रुपए की कमाई कीती सी।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

जी आनू जी वेलकम बैक, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवाणी 107.1 FM ते जी आरजे संदेश अलग दिनाल तुसी बने होए। देखो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय दे नॉवल परिणीता दी भी गल करिए ना तो परिणीता ता ते उंज तक कई फिल्मां बनियां ने जिस विच साल 2025 विच आई फिल्म परिणीता काफी यादगार सी, नॉवल दे इह वाला ही नाम सी। एक खूबसूरत म्यूजिकल रोमांटिक मूवी है। फिल्म विच प्रदीप सरकार ने बतौर डायरेक्टर ते विद्या बालन ने बतौर एक्ट्रेस अपना बॉलीवुड डेब्यू किया सी। फिल्म विच सैफ अली खान ते संजय दत्त ने भी लीड रोल निभाए सी, जबकि रायमा सेन ते दिया मिर्जा वर्गे कलाकार सपोर्टिंग रोल विच सी। 16-17 करोड़ दे बजट विच बनी सी इस फिल्म ते इसने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस ते 30 करोड़ रुपए कमाए सीगे।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट, फ्री ऑफ चार्ज। रिंग करें प्रकाश मेनन को, फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
2: Only God can judge me, that right? Only God, baby. Nobody else.
3: They secret.
4: Hey, Sean. मेरे राह दी मकामा नाल पक ठक सहज सुभा नू रख।

जी आनू जी वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी वन सन वन एम ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए हूं जेड़ी फिल्म की मैं गल करन जा रही हैगी है उनू तो कौन भावे भुल सकता कोई नहीं भुल सकता क्योंकि नाम है जी फिल्म का थ्री इडियट्स। आमिर खान स्टारर फिल्म थ्री इडियट्स चेतन भगत दे नॉवल फाइव पॉइंट समवन ते बनी हैगी है। साल 2009 इस फिल्म नू राजकुमार हिरानी ने डायरेक्ट किया। इस आमिर खान तो इलावा आर माधवन करीना कपूर और शर्मन जोशी लीड रोल विच सी। तीन दोस्तों की कहानी के जरिए मेकर्स ने एजुकेशन सिस्टम से मजाकिया अंदाज न सट मारी सी। फिल्म का लीड किरदार रैंचो दे नू क्रिएट करने लई मेकर्स ने रियल लाइफ हीरो सोमन वोंगचुक तो प्रेरणा लई सी। तमिल सिनेमा विच थ्री इडियट्स की रीमेक ननबन भी बेहद सफल रही जिस विच थलपति विजय ने रैंचो का रोल निभाया सी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से 150 करोड़ तो ज्यादा की कमाई की सी। फिल्म नू दर्शकों ते क्रिटिक्स दोवां ने खूब सराया सी। इस दी कॉमेडी गाने ते शानदार एक्टिंग ने इस नू ब्लॉकबस्टर बना दिता। ए फिल्म ना सिर्फ भारत विच बल्कि चीन ते जापान विच भी लोकां दे विच काफी पॉपुलर रही सी। ए साल 2009 दी सब तो ज्यादा कमाई करन वाली इंडियन फिल्म बनी सी। विकीपीडिया दी रिपोर्ट दे मुताबिक ना 55 करोड़ विच बनी इस फिल्म ने 400 करोड़ तो ज्यादा की कमाई की है।

0: बेबी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: के आलम में नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

0: द हाउस। हाँ जी ना, देखो बेला हो चुके हैं थोड़े तो इजाजत लैन दा, पर टाटा बाय बाय कहने तो पहला एक फिल्म हैगी है जिस बारे में तुम दसना बहुत ज्यादा जरूरी समझती हैगी है, तो जरूर दसूंगी। वो फिल्म है जी 12th Fail 2023 आई सी फिल्म 12th Fail। मनोज कुमार शर्मा ते श्रद्धा जोशी की असल जिंदगी ते बनी है। फिल्म में दिखाया गया है कि किवें मनोज यानी कि विक्रांत मैसी ने भीषण गरीबी, बहुत ज्यादा भयानक गरीबी ते असफलतावां नाल लड़दे हुए IPS बनने का सपना पूरा किया। फिल्म अनुराग पाठक की इसे नाम दी किताब ते बनी है। रिलीज होने तो बाद इस फिल्म नू दर्शकां ते क्रिटिक्स दोनों ने बहुत ज्यादा प्यार दिता। महज 20 करोड़ विच बनी से फिल्म ते बॉक्स ऑफिस ते 70 करोड़ ते करीब दी कमाई की है। इन्ना नहीं, नेशनल फिल्म अवार्ड दे विच इस नू बेस्ट फीचर फिल्म चुनिया गया ते विक्रांत मैसी नू इस लई शानदार एक्टिंग दे लई बेस्ट एक्टर दा नेशनल अवार्ड भी मिलिया। उधर टू स्टेट्स वी नॉवल ते बनी है 2014 आई फिल्म टू स्टेट्स चेतन भगत दे मशहूर नॉवल ते बनी एक मजेदार रोमांटिक ड्रामा है। फिल्म दी कहानी दो वक् वक् सूबियां दे लवर सेहत गिरद घूमती है जो अपने ब्याह दे लई वक् वक् परिवारां नू मनाउण दी जद्दोजहद विच लगे रहिंदे ने। 45 करोड़ दे बजट दे विच बनी सी ते 175 तो ज्यादा दी कमाई कीती। तां इह सारियां फिल्मां सी नॉवल से बनिया हुई हैं। तुहानू कोई होर पता होवे तां मैनू जरूर दस्यो। रेडियो ब्रिसोनी 101.9 FM साडा फेसबुक पेज है जी, ते brisoni@brisoni.com साडी ईमेल आईडी है, जरिए तुसीं जिहड़ा वी अपनाउणा तुसीं ओह अपना लो, साडे नाल गल्लबात जरूर करदे रहिया करो। बाकी मैं तां इही कहूंगी जी कि अपना बहुत बहुत ख्याल रख्या करो। सति श्री अकाल।
1: What does this fight mean to you to defend your title tomorrow night?
2: Yo, I'm gonna smash your boy.
3: Kid.
2: Tomorrow night, I'm gonna smash your boy.

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

से जो बरसों पर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए। ऐ दोस्त, ऐ दोस्त, ऐ दोस्त।

बढ़कर उसका साथ दिया, गिरते को यहाँ किसने थामा, किसने उसको हार दिया। ए दोस्त ए दोस्त ए दोस्त।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxlade, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
6: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
7: Hi, this is Salman Khan.
8: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
9: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
10: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
11: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
12: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
13: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

ना बदला मैं, ना बदला वो, ना बदला तू। अगर कुछ बदला है तो सिर्फ कमबख्त, ये वक्त है बदला। पहले था कबूतर, अब है ट्विटर, पहले थी बुक, अब है फेसबुक, पहले था टेलीग्राम, अब है इंस्टाग्राम।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। जी हाँ दोस्तों, तो प्रोग्राम शुरू हो गया है और क्या आप लोग रेडी हो। वेल, मिड वीक चल रहा है, वेडनेसडे है और वेडनेसडे ना बड़ी मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ आता है। मतलब आप बीच में होते हो। आप लोग बोलोगे बीच में होते हो, इसका क्या मतलब हुआ नहीं भैया, मतलब कुछ सेंस तो बनाओ, मेक इट मेक सेंस। वेल, सेंस मैं बनाने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मतलब मंडे ट्यूजडे को आपने भरपूर काम किया होता है तो आपको थोड़ी थकावट भी होती है, लेकिन आपको अपने गोल्स को अचीव करने की इंस्पिरेशन भी होती है। लेकिन वेडनेसडे यानी कि मिड वीक है तो उसके बाद के दो दिन यानी कि थर्सडे फ्राइडे का आपको इल्म भी होता है। आपको ऐसा लग रहा होता है कि बस थोड़ा और काम और फिर मजा ही मजा और फिर आराम ही आराम। जी हाँ, ये फीलिंग आपको सिर्फ और सिर्फ वेडनेसडे देता है, क्योंकि वेडनेसडे में आपने पिछले दो दिन जम के काम किया और अगले दो दिन के सुकून की जो हवाएं हैं वो आप तक पहुंच चुकी है। सो यही है वेडनेसडे की कशिश। और मैं कहती हूँ कि वेडनेसडे को अच्छे से सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। एंड यू नो व्हाट, वेडनेसडे को वुमेन डे भी माना जाता है। बाय वुमेन डे मतलब, ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर आपको नहीं पता है तो वुमेन पार्टीज जो हैं वो होती हैं, क्लब्स में भी वुमेन को जो है इससे ज्यादा अच्छे से जो है वो डेडिकेट किया गया है वुमेन पार्टीज के लिए। और क्यों ऐसा किया जाता है, वेल मुझे इससे पहले नहीं पता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वेडनेसडे हमेशा एकदम बीच में होता है, ना वो इधर का होता है ना वो उधर का होता है, मतलब वो किसी के साथ भी पार्शियलिटी नहीं करता है। आई गेस दैट इज वाई वुमेन के लिए ये कहा गया है। जी आप लोग बोलेंगे नीवेश शर्मा, औरतों को ग्लोरीफाई करने का तो तुम कोई मौका छोड़ना ही मत। क्या वेल, क्यों छोड़ू क्यों छोड़ूं? मैं तो कहूंगी कि औरतें जो है वो इस दुनिया की सबसे महान क्रिएशन है। औरतों के बिना इस दुनिया का क्या होगा, चल ही नहीं सकती। औरतें ही आपको जन्म देती हैं, औरतें ही आपको नर्चर करती हैं और औरतें ही आपको इस काबिल बनाती हैं कि आप ये सब समझ सको, देख सको, जान सको। सो या वुमेन आर दी बेस्ट क्रिएशन। जी हाँ, यहाँ पर अब आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको पता ही है एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज विच इज हेल्दी रिचुअल। और वो हेल्दी रिचुअल क्या है, वेल डीप ब्रेथ एक्सरसाइज हमें बहुत ही अच्छे से काम बनाती है, फोकस बनाती है, हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत ही अच्छा रखती है। सो आइए सबसे पहले डीप ब्रेथ एक्सरसाइज से शुरुआत करते हैं। क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ऐसे ही अच्छा फील करते करते अब जरा चलते हैं सीधा एक बहुत ही प्यारे से गाने की तरफ, जो कि है मूवी रावण का और इस गाने का नाम है दिलदारा। इट्स अ वेरी स्वीट स्वीट सॉन्ग। सो या दैट दिस इज फॉर यू। एंड फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

0: वैसे
1: जहाँ दोस्तों, और इससे पहले तेरे नैना की गलियों में खो जाए, यहाँ पर जरा बात कर लेते हैं किस बारे में। वेल ऑफ कोर्स मौसम के बारे में, क्या कह रहा है मौसम, क्या कह रहा है टेम्परेचर, ये सब जानने का वक्त हो गया है। 24 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर, अभी की बात की जाए तो 22.3 डिग्री सेल्सियस के करीब है, 24.8 डिग्री सेल्सियस के करीब आपको फील हो रहा है। और रात के टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो 19 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आप देख पाएंगे। बारिश की सिचुएशन, लेकिन उसी के साथ थोड़ी गर्जना की भी सिचुएशन। आप मुझे बताइए क्या हाल है आपके इलाके में, और क्या आप भी फील कर पा रहे हैं ये जो ठंडक धीरे धीरे धीरे बढ़ रही है। जी हाँ, जरूर बताइएगा। एयर क्वालिटी है एकदम एक्सीलेंट, और यहां पर थर्सडे की अगर बात करें तो अगेन 90% चांसेस बारिश के, 10-20 mm बारिश होने के चांसेस, और पॉसिबल थंडर स्टॉर्म जस्ट लाइक टुडे। और यहां पर जैसे कि मैंने कहा कि कुछ इलाकों में ऐसा हो सकता है कि नहीं भी होगी बारिश, आप मुझे बताइए कि क्या आपके यहां पर बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। और यहां पर ये है मौसम का हाल, लेकिन फ्राइडे को मौसम एकदम मजेदार होने वाला है, सनी सनी रहेगा विद 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो आज और कल आप बिना छातों के नहीं निकल सकते हो घर से बाहर। अगर आपको बारिश मिलती है तो आपको उसके लिए रेडी रहना है, और अगर नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, अपने बैग में रखिए और क्या। जी हाँ, ये है मौसम का हाल जो कि एकदम चल रहा है अपनी खतरनाक सी चाल, और यहाँ पर हम भी चलते हैं अपनी चाल और आपको सुनाते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना जो कि रोमांटिक ट्रैक है अरिजीत सिंह का गाया हुआ, विच इज मनजोगिया।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: अर्न मनी फ्रॉम योर एम्प्टी ड्रिंक कंटेनर्स विद कंटेनर्स फॉर चेंज। Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.
3: Yaar Rahul, tere case ka kya hua?
4: Yaar, I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज एंड associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
4: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235. Oye Rahul, vire tere case da ki hoya?
4: Oh yara, main bahut worried ha. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offence which 12 saal to vadda rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws which bhi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
4: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रही हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब जरा बात कर लेते हैं आपकी फरमाइशों के बारे में, क्योंकि आपकी फरमाइशों का सिलसिला जब शुरू हो जाता है ना तो मजा आ जाता है, तो बात बन जाती है, हमारा प्रोग्राम जो है वो खूबसूरत हो जाता है और आपका हिस्सेदारी भी हो जाती है, मतलब आपकी पार्टनरशिप भी हो जाती है। आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा, पार्टनरशिप तो तुम ऐसे कह रही हो कि जैसे कि कोई बहुत खतरनाक बिजनेस वेंचर होने वाला है और उसमें से हमें पता नहीं कितने ही अर्निंग्स होने वाली है। मतलब चलिए ठीक है, वो वाली पार्टनरशिप की बात नहीं हो रही है, बट यहाँ पे हिस्सेदारी की बात हो रही है, मतलब आपका भी योगदान रहेगा हमारे इस प्रोग्राम में। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से अपना फोन उठाइए क्योंकि आपको एक नंबर डायल करना है और उस नंबर को आपको कैसे डायल करना है आपको हम बता देते हैं। फोन उठाइए और नंबर डायल कीजिए +9182888871701। आई रिपीट, +9182888871701। तो बस फिर जल्दी से फोन उठाइए, नंबर डायल कर दीजिए यही वाला और भेज दीजिए हमें अपनी वो कीमती फरमाइश, वो अजीज गाना जो आपको बहुत ही पसंद है और यहाँ पर हम उसे प्ले करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारी पहली फरमाइश भी हम प्ले करने के लिए तैयार है क्योंकि ये फरमाइश आई है हमारी बहुत ही प्यारी लिसनर अमला जी की तरफ से फ्रॉम ऑल द वे टू शिकागो। जी हाँ, यहाँ पर परदेसिया जो है वो उन्होंने की है फरमाइश और ये गाना बहुत ही खूबसूरत है। सबसे पहली बात तो ये सोनू निगम का गाया हुआ गाना है, सो ऑफ कोर्स ये खूबसूरत है ही, प्लस इसकी धुन, एवरीथिंग अबाउट दिस सॉन्ग इज जस्ट वे टू ब्यूटिफुल। थैंक यू सो सो मच अमला जी, हमेशा की तरह खूबसूरत गाने फरमाइश करने के लिए। और ये रहा आपका ये खूबसूरत सा गाना, प्यारा सा गाना, थैंक यू सो मच फरमाइश के लिए।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी मैं यहाँ पर सुनाने वाली हूँ। जी हाँ, सो ये बहुत फिल्मी है क्योंकि ऐसा हमने फिल्मों में देखा है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कभी सुना नहीं है। बट एटलीस्ट मैंने नहीं सुना है, शायद आपने सुना हो। एंड देन यू विल बी लाइक ओके निव्या शर्मा, बट ये तो रियल लाइफ से ही स्टोरीज निकल कर आती है। सो ऑफकोर्स रियल लाइफ में किसी ना किसी के साथ होता है, तभी तो फिल्म के राइटर्स जो है वो ऐसा कुछ लिखते हैं। सो कुछ स्टोरी ऐसी है, किस्सा ऐसा है कि एक व्यक्ति जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेता है, मतलब उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो उससे ब्रेकअप कर लेती है, और ब्रेकअप के अगले ही दिन वो स्की करने के लिए जाता है और आइस स्की करते हुए वो गिर जाता है अपने सर के बल, और उसे इतना खतरनाक कंकशन होता है कि वो ब्रेकअप वाला फेस भूल जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना। सो पिछले दिन उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ ब्रेकअप करती है, वो दोनों एक दूसरे के साथ ब्रेकअप करते हैं। बंदा अगले दिन जाता है आइस स्की करने और वहां पर वो सर के बल गिर जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, और उसके बाद उसे इतना खतरनाक कंकशन होता है कि वो ब्रेकअप वाला पीरियड भूल जाता है। मतलब उसे याद ही नहीं है कि उसने कभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप किया है। अब अगली चीज क्या होती है? वेल, वो जाता है अगले दिन और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड की रूममेट्स के लिए और उनके लिए सबके लिए आइसक्रीम लेकर जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड को समझ नहीं आता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ। इनफैक्ट जब उसको कंकशन होता है, वो अपने फोन से फोन मिलाता है और कहता है कि क्या वो उसे हॉस्पिटल से पिकअप करने आ सकती है। उसकी गर्लफ्रेंड को तब भी नहीं समझ आता। फिर वो उसके लिए आइसक्रीम लेकर जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड को तब भी नहीं समझ आता। अब वो बहुत ही अच्छे से सब कुछ वापस से वैसा चलना शुरू हो जाता है। अब गर्लफ्रेंड जो है वो कंफ्यूज है, लेकिन गर्लफ्रेंड को अभी भी कोई आइडिया नहीं है कि वो व्यक्ति जो उसका बॉयफ्रेंड है वो लिटरली कंकशन की वजह से वो ब्रेकअप वाला टाइम या पीरियड भूल चुका है। मतलब उसको कोई आइडिया ही नहीं है कुछ ऐसा हुआ भी है। फिर क्या था, धीरे धीरे उनकी जिंदगी जो है वो आगे की ओर बढ़ने लगती है, और फिर एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड को लगता है कि नहीं यार, मेरा बॉयफ्रेंड है तो बहुत अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसको फिर से जो है आई शुड आस्क हिम आउट। जी हाँ, और जब वो बोलती है कि चलिए ठीक है, फिर से हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं, फिर से हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, तो उसका जो बॉयफ्रेंड है वो देखता है कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ऑफकोर्स हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही तो है, मतलब दोबारा से बनने का क्या मतलब है, मुझे समझ नहीं आ रहा व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। जी हाँ, तब उस लड़की को एहसास होता है कि ओ माय गॉड, सो कंकशन की वजह से ये बरखुरदार सब कुछ भूल चुके हैं, मतलब इनको याद ही नहीं है कि हमारा ब्रेकअप कभी हुआ भी था। फिर क्या है, बहुत ही अच्छे से हैप्पीली एवर आफ्टर होता है क्योंकि दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। मतलब आप खुद सोचिए, उस कंकशन ने एक रिश्ता बचा लिया। आगे क्या हुआ? वेल, आगे हैप्पीली एवर आफ्टर हुआ, उसके आगे की कहानी तो किसी ने हमें नहीं बताई, सो हम आपको कैसे बता दें। बट द थिंग इज कि यहाँ पर ये कहानी आपको ऐसा लगेगा कि किसी पिक्चर की कहानी है, बट नो नो नो, इट्स अ रियल लाइफ स्टोरी। जी, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है।

0: For top quality Bollywood fashions, visit Rani Creations at 33 Balclava Street, Woolloongabba. Open daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
1: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में. फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद. कॉल नाउ ऑन 04111270035. रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर. For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony. Remember the name, Parmanand, a professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.
2: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922. A piece of Queensland history with full provenance, owned outright. Transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are. Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
3: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो. तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है. इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां. अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नू दान विच दे दिओ. तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है. बैंक विच पाओ, ना के कूड़ेदान विच. अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो.
4: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार. हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं.
5: तो उमसॉग से बात कर. इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से.
4: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
5: अरे, उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है.
4: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
5: बिल्कुल. खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो.
4: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी.
5: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है. भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801. प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई.
6: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी.
7: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ. तो दोस्तों, रणवीर सिंह जो कि धुरंधर के सक्सेस के बाद एकदम धुरंधर बन के निकले थे, उनके लिए इंडस्ट्री में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है. जी, आप लोग बोलोगे कि इतनी बड़ी हिट देने के बाद भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, लाइक व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट निव्या? वेल, ये रिलेटेड है उस कॉन्ट्रोवर्सी से जो कि हुई है उनकी डॉन 3 से एग्जिट से. जी हाँ, सो डॉन 3 में वो आने वाले थे. ये बहुत पहले अनाउंस कर दिया गया था. फरहान अख्तर जो है वो मेकर हैं डॉन 3 के, और ऐसा कहा जा रहा था कि कैसे रणवीर सिंह जो है वो जल्द ही उन्हें ज्वाइन करने वाले हैं. लेकिन धुरंधर के बाद ही ऐसी खबर आती है कि जो धुरंधर यानी कि जो रणवीर सिंह है वो डॉन 3 अब नहीं करना चाहते हैं. उसके पीछे रीजन है कि वो एक जैसी मूवीज ही या माफिया टाइप मूवीज या ऐसी वाली मूवीज जो है इसके साथ अपने आप को एक ही साथ ज्यादा टाइम तक एसोसिएट नहीं करना चाहते हैं. वो नहीं चाहते थे कि उनकी एक इमेज सेट हो जाए जो कि ऐसी ही हो, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी अ वर्सेटाइल एक्टर. तो उन्होंने डॉन 3 से एग्जिट करने का सोचा, लेकिन वो एग्जिट जो है वो अब अच्छा नहीं कर रहा उनके साथ. क्योंकि पहले तो इसके बारे में सिर्फ ये खबरें ही उड़ रही थी कि कैसे इसमें फरहान अख्तर जो है वो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं. फिर फरहान अख्तर ने उन पर इल्जाम लगाए कि ऐसे उन्होंने अब्रप्टली जो है वो एग्जिट किया है डॉन 3 से, और ऐसे में उन्हें नुकसान हुआ है, यानी कि फरहान अख्तर को नुकसान हुआ है. जी हाँ, आपको मैं ये बता दूं कि उन पर एक अथॉरिटी है जो कि लिटरली डिसाइड करती है कि एक्टर्स कितना काम कर पाएंगे, अच्छे से काम कर पाएंगे या काम कर भी पाएंगे किसी मॉरल एथिकल सिचुएशन की वजह से. तो यहां पर उन्होंने रणवीर सिंह पर बैन लगाया है. जी हाँ, बैन लगा दिया है. जी, आप लोग बोलोगे कि बैन, लाइक किसी मूवी से एग्जिट करने के लिए बैन लगा दिया. ओके ठीक है, यू कैन सू हिम. अगर फरहान अख्तर को इतना ही है तो फरहान अख्तर उनको कोर्ट में लेकर जा सकते हैं, उन पर पेनल्टी डाल सकते हैं अगर उन्हें इतना ही हो रहा है. बट बैन व्हाई? वेल दैट इज व्हाट इवन आई कांट अंडरस्टैंड. बैन की कोई भी यहां पर जरूरत नहीं थी. ऑफ कोर्स यहां पर इतनी बड़ी हिट देने के बाद, बॉलीवुड को सबसे बड़ी हिट देने के बाद भी अगर किसी एक्टर के साथ ऐसा हो सकता है तो वी डोंट नो. नाउ आई एम ऑल्सो सेइंग कि यहां पर फरहान अख्तर के साथ भी गलत हुआ है अगर सच में अब्रप्टली उन्होंने एग्जिट मारा है. क्योंकि जब मेकर्स जो है वो किसी एक्टर को फाइनलाइज करते हैं, उसके साथ बहुत सारी चीजें जो है वो एसोसिएट हो जाती है, फाइनलाइज हो जाती है, और ऐसे में वो सारी की सारी चीजें किसी नए एक्टर के साथ दोबारा से करना इज टाइम कंज्यूम and also expensive. So ऐसे में फरहान अख्तर ने 45 करोड़ का हरजाना जो है वो रणवीर सिंह पर डाला है. जी हाँ, वो चाहते हैं कि 45 करोड़ जो है रुपए रणवीर सिंह उन्हें दे, और साथ में ये बैन वाली सिचुएशन भी वहां पर हो गई. अब रणवीर सिंह कल एयरपोर्ट पे नजर आए थे, वहां से वो निकलते ही एक मंदिर में अब दर्शन करने गए, और यहां पर वो शायद इसी मामले में दर्शन करने गए थे और इसी मामले में वो भगवान के दर पर पहुंचे थे कि ये जो सारी मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ रहा है ये नहीं होना चाहिए. वेल व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्या रणवीर सिंह जैसा एक्टर बैन होना चाहिए लिटरली बॉलीवुड से? डू यू रियली थिंक? वेल आई डोंट थिंक सो. मुझे ऐसा लगता है कि रणवीर सिंह इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स वी हैव. आई हैव टू से कि ही इज बेस्ट, क्योंकि लोग कहेंगे कि रणबीर कपूर, विकी कौशल, बट मुझे ऐसा लगता है कि रणवीर सिंह इज दी बेस्ट. नो वन कम्स क्लोज टू हिम. या यू कैन से कि विकी कौशल एंड रणबीर कपूर दे आर ऑल्सो गुड एक्टर्स, वेरी गुड एक्टर्स, बट रणवीर सिंह फॉर मी इज द विनर. नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ धुरंधर, बट बिकॉज ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, बिकॉज ऑफ बाजीराव मस्तानी, बिकॉज ऑफ रामलीला. जी हाँ, हमेशा से उन्होंने प्रूव किया है कि जब वो किसी भी चीज में डाइव करते हैं उसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्ले करते हैं. 1983, जी हाँ, मतलब वो जो है वो वर्ल्ड कप वाला जो थे जहां पे उन्होंने लिटरली बायोपिक में कपिल देव का कैरेक्टर प्ले किया था, उधर भी उन्होंने प्रूव किया है. सो अगेन, रणवीर सिंह जो है वो कहीं भी नहीं जाने चाहिए. फिर चाहे फरहान अख्तर जो है वो उनसे कंपनसेशन जो है वो मांग सकते हैं, बट यहाँ पर बैन इज टोटली रॉन्ग. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? जरूर मुझे बताइएगा. यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

जी हाँ दोस्तों, और मुझे ना अब आपसे एक सवाल पूछना है जो कि लिटरली बहुत ही ज्यादा लेजिट है। अब आप लोग बोलोगे कि अब क्या हो गया निव्या शर्मा। सो ऐसा आपके साथ ही होता है कि मतलब सिर्फ मेरे साथ ही होता है कि आप लोगों के साथ भी होता है कि कोई आपको कहे डेजर्ट, और ये डेजर्ट वाली सिचुएशन कब कहे? जी हाँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। सो बेसिकली आपने बहुत ही टेस्टी यमी सा खाना खा लिया है। जी हाँ, आप बहुत ज्यादा फुल हो, मतलब लिटरली आप बेयरली ब्रीद कर पा रहे हो, लेकिन फिर एकदम से कोई आपको कहता है टन टन टन, डू यू वांट डेजर्ट? एंड यू विल बी लाइक बट ऑफकोर्स एक सेकेंड पहले तक आप सांस भी नहीं ले पा रहे थे क्योंकि आपने इतना खा लिया था। वेल, ये डेजर्ट का जो लालच है ना, बहुत ही ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। ये डेजर्ट का लालच तो लॉटरी के लालच से भी ज्यादा खतरनाक है। मतलब लोग डेजर्ट खाने के लिए, जो पेट में जगह नहीं होती इतना खाना खाने के बाद, वो भी बना लेते हैं लिटरली। मतलब उनको कुछ ना कुछ मीठा चाहिए, जो मीठे की क्रेविंग है खाने के बाद, ये सदियों से चली आ रही है। और इसी चक्कर में बहुत सारे लोग जो है वो अपना कल्याणम कर लेते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि या क्या सिर्फ मेरे साथ ये होता है कि जब मैं लिटरली इतनी ज्यादा फुल हूं कि मुझे ब्रीद भी नहीं कर पा रही हूं, सांस भी नहीं ले पा रही हूं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पेट जो है वो फट जाएगा, लेकिन फिर सब कोई एकदम से आता है और कहता है कि ओ निव्या शर्मा, डू यू वॉन्ट डेजर्ट? वुड यू लाइक टू हैव डेजर्ट? एंड आई एम लाइक, ओ या, आई हैव स्पेस इन माय स्टमक, वो साइड में मैंने छुपा के रखा हुआ था, वहां पे आ जाएगा वो डेजर्ट। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर, याद रहे 0400-644-435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
6: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
5: अच्छा, वो क्या?
6: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
5: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
6: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी।
7: डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
8: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
9: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
10: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे अनियार श्रीनिव्या के साथ। दोस्तों, यहाँ पर नासा ने रिवील किया है 3-phase मिशन टू बिल्ड परमानेंट मून बेस। जी हाँ, नासा ने ये अनाउंस कर दिया है कि $20 billion की लागत से वो प्लान कर रहे हैं बिल्ड करने का एक परमानेंट बेस ऑन द मून। जी हाँ, और इसके लिए उससे पहले वो 3 lunar mission जो है उन्होंने स्केड्यूल ये है इसी साल, मतलब इसी साल में 3 lunar mission जो है वो होने वाले हैं, जो कि इसकी पूरी तरह से प्रिपरेशन करने वाले हैं। और इसके बारे में जानकारी दी है वेल ऑफ कोर्स नासा एडमिनिस्ट्रेशन जेरेड इसाकमैन ने। उन्होंने कहा है कि प्रोजेक्ट जो है वो एम कर रहा है क्रिएट करने के लिए ह्यूमैनिटी का पहला लॉन्ग टर्म आउटपोस्ट जो कि अनदर सेलेस्टियल वर्ल्ड में होने वाला है, और ये एस्ट्रोनॉट्स के लिए हेल्पफुल होगा जब वो मून पे लैंड करेंगे और जब मून पे रिसर्च करना चाहेंगे तो वहां पर उनको एक परमानेंट बेस मिलेगा जहां पर वो रहकर रुककर अपनी रिसर्च जो है वो कर सकते हैं। जी हाँ, सो अगेन ये 2028 तक ये करना चाहते हैं, और 2028 तक अगर ये करना चाहते हैं, परमानेंट बेस बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें पहले बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी जो कि तीन मिशन्स में वो करने वाले हैं। पहला मिशन होगा मून बेस वन, जहां पर वो यूज करेंगे ब्लू ओरिजिन का ब्लू मून मार्क वन लैंडर जो कि डिलीवर करेगा साइंटिफिक इक्विपमेंट को जो कि टेस्ट करेगा लैंडिंग टेक्नोलॉजीज ऑन द लूनर सरफेस। जी हाँ, ये पहला मिशन है। सेकंड की अगर बात की जाए तो वो करेगा मोर देन 1100 पाउंड्स ऑफ कार्गो, जिसमें इंक्लूड होगा लूनर रोवर डिजाइन किया गया जो कि हेल्प करेगा एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेवल करने के लिए अक्रॉस द मून। जी हाँ, जैसे मैंने बताया कि पहला जो है वो जाएगा, फिर दूसरा जो है मिशन उसमें 1100 पाउंड से ज्यादा की चीजें जो है वो जाएंगी, कार्गो जाएगा, और उसमें एक लूनर जो है वो रोवर भी होगा जो कि घूमने के लिए जस्ट लाइक अ कार जो कि वहां पर हेल्प करेगा मून के सरफेस पर घूमने के लिए। जी हाँ, जब फ्यूचर में मून मिशन होंगे तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वहां पर उन्हें कुछ तो चाहिए जहां पर उसकी हेल्प से वो उस पर ट्रैवल कर सके। जो थर्ड मिशन है वो स्टडी करेगा मिस्टीरियस लूनर स्वर्ल्स को जो कि कैरी करती है साइंटिफिक प्लेलोड्स को, और वहां पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कोरियन स्पेस एजेंसी साथ में मिलकर उसमें अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे। जी हाँ, यहां पर ये सारी की सारी चीजें जो है वो होने वाली हैं इसी साल, ये कहा गया है नासा की तरफ से, क्योंकि 2028 तक वो परमानेंट लूनर बेस बनाना चाहते हैं मून पर। जी हाँ, ऑफकोर्स नासा ने कहा है कि प्रोजेक्ट जो है इट विल मूव फॉरवर्ड इन थ्री स्टेजेस, जैसे मैंने कहा, फिर उसके बाद जो है 2028 तक ये पूरी तरह इसे कंक्लूड करना चाहते हैं। आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा, हमें तो लगता है मून लैंडिंग ही रियल नहीं है, तो ये मून पर बेस बना पाएंगे? वेल, वी डोंट नो, क्योंकि पहले अगर मून लैंडिंग पॉसिबल नहीं भी थी, और मतलब मान लेते हैं, सुपोज कर लेते हैं कि उन्होंने सच में हमसे छल कपट किया था, हमें गलत मलत फिक्शनल चीज दिखाई थी, तो यहां पर टाइम जो है वो चेंज हो गया है, हमारे पास अब स्पेसएक्स है, हमारे पास ब्लू ओरिजिन है, हमारे पास नासा है, और बहुत सारी और भी कंट्रीज की स्पेस एजेंसीज हैं, और कहीं ना कहीं कैपेबिलिटीज जो है वो बढ़ गई है पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा। वेल, लेट्स सी क्या ये तीनों मिशन जो है वो इस साल हो पाते हैं, और क्या 2028 तक वो सच में लूनर बेस, परमानेंट लूनर बेस बना पाते हैं। और जैसे कि नासा कह रहा है कि वो पहला लूनर बेस होने वाला है परमानेंट, बट पता नहीं क्यों मुझे हंच हो रहा है कि उससे पहले चाइना वहां पर कुछ करने वाला है, मतलब चाइना ही वहां पर अपना लूनर बेस बनाने वाला है, बिकॉज जिस स्पीड से चाइना बढ़ रहा है चांद की ओर, कोई भी स्पेस एजेंसी नहीं बढ़ रही, नासा भी नहीं। जी हाँ, ये मार्स की ओर जा रहे थे, पर इन्हें पता चला कि चाइना तो मून की ओर जा रहा है, तो अब चलो मार्स को छोड़ो, पहले मून की तरफ चलो। लेट्स सी क्या बनता है। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जादू सोर के साथ बारिश तो हो रही है खतरनाक छमछम और बहुत ही खूबसूरत जो है वो मौसम बना हुआ है लिटरली। लेकिन यहाँ पर जरा खूबसूरत जो नहीं है उस तरफ रुख करने का वक्त आ गया। वेल, आपको पता ही है रियलिटी चेक, इसका मतलब है कि हम जा रहे हैं जरा बारिश की ओर, बारिश की ओर नहीं, न्यूज़ की ओर, क्योंकि बारिश तो खूबसूरत है लेकिन जो खूबसूरत नहीं है वो है न्यूज़। जी हाँ, अच्छी न्यूज़ हमें कहाँ ही मिलती है। जी हाँ, और जब से ईरान पर ये हमला हुआ है, ईरान ने मेक श्योर किया है कि पूरी दुनिया में पूरा भौचाल आ जाए क्योंकि हम पर हमला किया कैसे। जी हाँ, यहाँ पर अब सबसे पहले बात करते हैं, न्यूज़ की बात हो रही है, न्यूज़ का सिलसिला, खबरों का सिलसिला शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की। पीएम मोदी ने गर्मी के कारण देशवासियों से की ये अपील, और क्या है इसमें, आइए जरा जानते हैं। भारत के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ ही दैनिक जीवन में गर्मी से होने वाली कई कठिनाइयां भी बढ़ रही हैं। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि जितनी अधिक सावधानी बरत सके अवश्य बरतें। पीएम मोदी ने लिखा कि खुद को हाइड्रेटेड रखें, घर से बाहर निकलते समय पानी साथ रखें, ऐसे मौसम में आपकी संवेदनशीलता भी बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। यदि संभव हो तो किसी प्यासे व्यक्ति को एक गिलास पानी अवश्य दें। मैं ऐसे लोगों की सराहना भी करूंगा जो अपने घरों और दुकानों के बाहर मटके में जल रखते हैं ताकि कोई भी उनसे पानी पी सके। पीएम मोदी ने गर्मी से बीमार पड़े लोगों को ओआरएस देने की अपील की, साथ ही बच्चों, बुजुर्गों और बाहर काम करने वाले लोगों से विशेष ध्यान रखने के लिए कहा। जी हाँ, यहाँ पर पीएम मोदी की इस अपील के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने तंज कसते हुए कहा कि गर्मी तो झेल लेंगे लेकिन महंगाई से जनता के पसीने छूट रहे हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि गर्मी तो झेल लेंगे पर भाजपा प्रायोजित महंगाई की आग से आम जनता के पसीने छूट रहे हैं। अपनी सरकार की लूट पर भी कभी कुछ बोलिए मोदी जी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स ना लिटरली रियलिटी शो है, लिटरली मतलब सच में मुझे ऐसा लगता है कि रियलिटी शो जो है वो रियलिटी शो नहीं है लेकिन पॉलिटिक्स जो है वो डेफिनेटली रियलिटी शो है। मतलब यहाँ पे गर्मी से बचने की अपील की जा रही है तो उसमें भी ऑपोजिशन ने कुछ खतरनाक तंच जो है वो कस दिया कि भाई गर्मी से तो बच जाएंगे लेकिन आपकी महंगाई की गर्मी हमें लपेटे में ले रही है, उससे तो बचा लो मोदी जी। क्या बात है, क्या बात है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इनको स्क्रिप्ट राइटर होना चाहिए, सच में पॉलिटिकल फिगर्स को स्क्रिप्ट राइटर होना चाहिए, बिकॉज आई मीन दे कैन बी रियली क्रिएटिव। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से जो कि अगेन जबरदस्त है।

0: यार ना डरना कर, नच ना यार, नच ना।
1: अरे अरे छोड़ो यार, मैं नहीं नाचूंगा वाचूंगा।
2: ओए पुत्तर नच ना, भैन दी सगाई च तां भाई नूं नचना ही पैंदा है।
1: हाँ हाँ तो फिर बड़े भैया को नचाओ ना।
3: क्यों, तेरी भी तो भैन है।
4: ए गल चंगी बोली।
5: ओ कम ऑन शेखर, नाचो ना।
1: नहीं नहीं मुझे नहीं नाचना।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ खबरों की बात हो रही है और अब जरा बात करते हैं लेबनान की। लेबनान का दावा है कि इसराइल के ताजा हमलों में 31 लोग मारे गए, इनमें बच्चे भी शामिल हैं। इसराइल की ओर से दक्षिण और पूर्वी लेबनान में किए गए हमलों में दर्जनों लोग मारे गए हैं। यह हमला तब हुआ जब इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने का ऐलान किया। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि ताजा हमलों में कम से कम 31 लोग मारे गए हैं, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। इसराइली सेना ने कहा कि उसने हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा ठिकानों और लड़ाकों को निशाना बनाया। इससे पहले सोमवार को नेतन्याहू ने कहा था कि उन्होंने हिजबुल्लाह पर निशाना साधने और ज्यादा दबाव डालने का आदेश दिया है। मंगलवार को सुरक्षा कैबिनेट की बैठक में उन्होंने कहा कि इसराइल लेबनान में अपना अभियान और तेजी से चला रहा है। उन्होंने कहा कि आईडीएफ जमीन पर बड़ी ताकतों के साथ काम कर रही है और अहम जगहों पर कब्जा कर रही है। सिक्योरिटी जोन को मजबूत किया जा रहा है ताकि उत्तरी इसराइल की बस्तियों को हिजबुल्लाह के हमलों से बचाया जा सके। गौरतलब है कि ईरान ने अमेरिका ने मध्यस्थता करते हुए इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम करवाया था, लेकिन दोनों पक्षों ने इसे कई बार तोड़ दिया है। इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए।

जी दोस्तों, और इसी के साथ खबरों की बात हो रही है। अमेरिका के हालिया हमलों के बाद समझौते पर क्या बोले ईरान के राष्ट्रपति। जी हाँ, सो अगर आपको नहीं पता है तो अमेरिका ने फिर से ईरान पर हमला कर दिया था, लेकिन ये कहा गया कि ये हमला तो वो अपने डिफेंस में कर रहे थे, ये उन्होंने खुद से नहीं किया था, ये डिफेंसिव हमला था, मतलब अपने डिफेंस के लिए उन्होंने हमला किया था। अब आप लोग बोलोगे कि हाँ, अमेरिका का तो काम ही ये है, बोलता तो ये कि ओ माई गॉड, अभी बस अभी शांति होने वाली है, इसीलिए उस इंसान को नहीं मिला नोबेल पीस प्राइज, लेकिन उसने फिर भी इधर से उधर से कान इधर से पकड़ के दूसरा पकड़ के ले ही लिया। दैट इज अनदर केस, बता देंगे इसकी। यहां पर शांति के लिए चाहिए था, शांति से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। यहां पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिज़िश्कियान ने कहा कि वो लड़ाई खत्म करने के लिए एक सम्मानजनक रास्ता तलाशने को तैयार है। ये बात राष्ट्रपति पिज़िश्कियान ने अमेरिका की ओर से हुए ताजा हमलों के बाद मंगलवार को की है। ईरान के सरकार समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक मंगलवार को कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से फोन पर बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पिज़िश्कियान ने उन्हें समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। मुझे समझ नहीं आता इनके इतने लंबे लंबे नाम कौन रखता है। चलिए आगे की बात करते हैं। राष्ट्रपति पिज़िश्कियान ने आगे कहा कि ईरान हमेशा बातचीत और समझौते के असूलों का पालन करता रहा है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि दूसरा पक्ष अपने वादे सिर्फ बोलकर ही नहीं बल्कि पूरा करके भी दिखाए। ईरानी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि इलाके में शांति और स्थिरता लाने के लिए साफ रास्ता बनाने की कोशिश हो रही है, इसके लिए जरूरी कागजात और समझौते तैयार किए जा रहे हैं और उन्हें पूरा करने का काम तेजी से चल रहा है। वेल, काम तो 3 महीने से तेजी से चल रहा है पर अभी तक पूरा नहीं हो रहा है, एंड वी डोंट नो व्हेन इट्स गोना हैपन। पर चलिए हम जरा आगे की ओर बढ़ते हैं और एक और मजेदार सा गाना आपको यहां पर सुनाते हैं।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो briswani.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों वही एक बहुत ही खूबसूरत लाइट शो जो कि बन गया ऑलमोस्ट नाइटमेयर। जी हाँ, 19 ड्रोन्स जो कि एक बहुत ही खूबसूरत जो है नजारा पेश कर रहे थे, उनको लिटरली नीचे गिरना पड़ा पानी में। जी हाँ, सो ये मोमेंट है जब 19 ड्रोन्स जो है दे फेल फ्रॉम द स्काई एंड क्रैश्ड इनटू सिडनीज डार्लिंग हार्बर। जी हाँ, और ये एनुअल विविड लाइट फेस्टिवल था जब ये लाइट शो जो है वो हो रहा था, और ऐसे ही एकदम से जो है वो सारे के सारे ड्रोन्स जो है वो वाटर में जाकर गिर जाते हैं, पानी में जाकर क्रैश कर जाते हैं। सो रिपोर्ट्स की अगर माने तो ड्रोन्स जो है उनको फोर्स किया गया डाउन पानी में जाने के लिए, और ये चेंजेस आए बिकॉज ऑफ अनफोर्सीन चेंज इन रेडियो फ्रीक्वेंसी। जी हाँ, ये अथॉरिटीज की तरफ से जो है वो कहा गया है, कोई इंजरीज जो है वो रिपोर्ट नहीं की गई है। और एक अपडेट जो कि बाद में आया है उसमें विविड सिडनी ने कहा है कि ये ड्रोन शो जो कि शेड्यूल किया गया था ट्यूसडे और वेडनेसडे के लिए, उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। और फेस्टिवल जो अथॉरिटीज है उन्होंने अपोलोजाइज किया है डिसअपॉइंटमेंट के लिए एंड इनकन्वीनियंस के लिए जो कि अटेंडीज को हुई है। वेल ऑफकोर्स, जब एक बहुत ही खूबसूरत नजारा जो है वो ड्रोन्स पेश कर रहे हो और एकदम से उनमें से सब एक एक करके जो है वो नीचे गिर जाते हैं, तो डेफिनेटली लोग तो डरेंगे ही। और ऐसे में कोई इंजरी नहीं आई, वो एक बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन यहां पर जो अगले शोज थे उनको भी कैंसिल कर दिया गया। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है और मुझे ऐसा लगता है कि इसका जवाब सबको देना चाहिए जो हमें रात को खाना खाने से मना करते हैं. सो इफ वी आर नॉट मेंट टू हैव मिडनाइट स्नैक्स, देन व्हाई इज देयर अ लाइट इन द फ्रिज? लाइक व्हाई? मेक इट मेक सेंस. मतलब अगर आप चाहते हो कि हम मिडनाइट स्नैकिंग ना करें, हम रात को कुछ खाएं ना, तो आपने फ्रिज में लाइट दी ही क्यों? फ्रिज में लाइट देने का मतलब ही क्या बनता है फिर, राइट? मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि बात में कितना दम है. और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, और अगर आप लोगों में से कोई भी किसी भी ऐसी इंडस्ट्री में काम करता है जो कि फ्रिजेस से रिलेटेड है और वहां पर ये डिसाइड किया जाता है कि फ्रिज में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, देन प्लीज टेल मी कि फ्रिज में लाइट क्यों दी अगर आप चाहते थे हम रात को कुछ भी मिडनाइट स्नैकिंग ना करें. मेक इट मेक सेंस, दैट्स ऑल आई वांट टू आस्क. यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

जी हाँ दोस्तों, टिप टिप पानी तो बरस रहा है, लेकिन यहाँ पर अब आपको कुछ बताने वाले जिसको सुन के आपको समझ नहीं आएगा कि आप इस पे हंसे या इस पे आपको डिसरिस्पेक्टफुल फील करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बात हो रही है राष्ट्रपिता यानी कि नेशनल फादर ऑफ इंडिया, जी हाँ बात हो रही है गांधी जी की। जी हाँ, अब आप लोग बोलोगे कि ऐसा क्या हुआ निवेश शर्मा, वेल वेल वेल, सैन फ्रांसिस्को से एक फोटो वायरल हो रही है अब गांधी जी के स्टैचू की, जो कि सैन फ्रांसिस्को में है, और वहां पर गांधी जी की फोटो नहीं, गांधी जी के स्टैचू में किसी ने उनकी आंखों में रेड लेजर लाइट लगा दी है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने वो फोटो देखी, मुझे ऐसा लगा कि कोई मीम बनाने की कोशिश कर रहा है, एंड आई वाज लाइक कि यार दिस इज सो फनी, बट देन व्हेन आई रेड अबाउट इट आई वाज लाइक ओ माय गॉड, लोगों की क्रिएटिविटी खतरनाक जगहों पर ही क्यों निकल कर आती है। सो समवन इन सैन फ्रांसिस्को स्नक अप टू द सिटीज गांधी स्टैचू एंड एट नाइट एंड गेव इट अ ग्लोइंग रेड आईज, लिटरली ग्लोइंग रेड आईज, जो कि लिटरली आपको लगेगा कि ये लेजर लाइट जैसी सिचुएशन है। जी हाँ, अब इंटरनेट जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वॉज इट जीनियस थिंग और डिसरिस्पेक्टफुल। जी हाँ, सो अगेन एक अनोनिमस प्रैंकस्टर ने पोस्ट किया है फोटो को रेडिट में, और उन्होंने एग्जैक्टली बताया है कि कैसे उन्होंने ये किया। जी हाँ, उन्होंने रेड एलईडी जो है को टेप किया, और फिर एक कॉइन की सेल बैटरी के साथ, जो है कॉइन सेल बैटरी के साथ टेप किया, और फिर उसको कवर किया इन अ ब्लैक प्लेट डो। जी हाँ, और उसके बाद उसे डायरेक्टली प्लेस किया स्टैचू की ओरिजिनल आईज में। जी हाँ, और अगेन फिर उसके बाद जो है, अगर आप देखोगे तो गांधी जी, मतलब रात को आप देखोगे तो गांधी जी का स्टैचू जो है वो नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन उनकी आंखें एकदम से ग्लोइंग ग्लोइंग चमक रही है। आई डोंट नो व्हाट टू से टू दैट, बट जिसने भी ये किया है डेफिनेटली डेफिनेटली यहां पर ये उनको कुछ ना कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। और आप मुझे ये बताइए कि वॉज इट फनी, वॉज इट क्रिएटिव, और वॉज इट डिसरिस्पेक्टफुल, लाइक टेल मी अबाउट इट, क्योंकि जो लोग हैं वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। मतलब गांधी जी की आंखों को, ब्रॉन्ज स्टैचू को गए रात में और उनकी आंखों को लेजर लाइट लगा दी, बताओ उनकी आंखों में ग्लोइंग लाइट की, मतलब उनको लग रहा है कि गांधी जी अब लेजर लाइट से कुछ कारनामा करने वाले। क्या मतलब, क्या क्रिएटिविटी है, आई डोंट नो। इतनी क्रिएटिविटी हम ये इस मामले में क्यों नहीं यूज करते कि हम खाना ज्यादा कैसे उगाएं, राइट, हम लोगों का भला कैसे करें। गांधी जी के स्टैचू को रेड ग्लोइंग लाइट देने की पड़ी हुई है लोगों को, मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से टू दैट। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ यहाँ पर एक फरमाइशी गीत प्ले करने का वक्त हो गया है। आई नो आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा अब तो वक्त हो रहा है किस चीज का, वेल ऑफ कोर्स ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट का, जो कि स्टार्ट होने ही वाला है जस्ट इस फरमाइशी गीत के बाद। अब ये फरमाइशी गीत आया है बहुत ही खास लिसनर जस्सी जी की तरफ से, और ये फरमाइश भी है बहुत ही मजेदार। गाने का नाम है दिल लगी कड़ी गुजरात दी, दिल लगी कड़ी। अय होय होय, आप मुझे बताइए कभी आपको किसी गुजराती लड़की पे क्रश हुआ है या नहीं? भी आपको भी ऐसा लगा है किसी गुजराती लड़की को देखकर कि ओ माय गॉड मेरा दिल तो ये ले ही गई है? चलिए बताइएगा जरूर अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है। इसी के साथ थैंक यू सो मच जस्सी जी हमेशा की तरह जबरदस्त फरमाइशों के लिए, और ये रहा आपका ये गाना विदाउट एनी डिले।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi guys, I'm Madhvi from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Salman Khan.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
9: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
11: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं. अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता. कल को इमरजेंसी हो जाए तो.
12: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ. फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है.
11: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड.
12: बिल्कुल. ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया. ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स. अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए. ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG. वेबसाइट omsorg.co.in. व्हाट्सएप या कॉल कीजिए. इंडिया नंबर 8448381360. ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर.
13: दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ. और दोस्तों, इसी के साथ अब अपने फेवरेट सेगमेंट में एंटर करने का वक्त हो गया है, विच इज ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट. मतलब पूरी तरह से पुराने गानों का वो खूबसूरत सा सफर जो हमें इतना अच्छा फील कराता है, इतना अच्छा फील कराता है कि हम लोग सोच नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं कि हम उसी एरा में हैं या इस एरा में हैं. जी हाँ, यहाँ पर जो सबसे पहला गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ इस सेगमेंट का, वो है मेरे हाथों में नो नो चूड़ियां हैं. जी हाँ, सुनते हैं इस गाने को, क्योंकि ये खूबसूरत सा गाना लता जी की आवाज में मैं आपको सुनाने वाली हूँ, और उसके बाद आपको सुनाऊंगी प्यारे सा किस्सा भी.

जी दोस्तों, गाना इतना खूबसूरत है ना, और ऊपर से पैर थिरकने खुद ही लग जाते हैं इस गाने से। जी हाँ, कुछ गानों में वो दम है कि आपको बैठे बैठे नचा दे, लेटे लेटे नचा दे और चलते चलते भी नचा दे। बस बाकी सब ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कहीं आप ड्राइव करते करते ना नाचना शुरू कर दे, फिर गड़बड़ हो सकती है। अब अगर बाकी सब चल रहा है फिर तो ठीक है, फिर आप डांस कर सकते हो, फिर आप खुल्लम खुल्ला डांस कर सकते हो। और आप लोग बोलोगे खुल्लम खुल्ला डांस कर सकते हो, ये क्या बात हुई? वेल, यही तो किस्सा है जो मैं अब आपको सुनाने वाली हूँ, क्योंकि ये ऋषि जी का है। एक बहुत बड़े कार्यक्रम के दौरान होस्ट ने जब ऋषि जी को कहा कि ऋषि जी आप इतने रोमांटिक हीरो रहे हो, आपने इतने रोमांटिक गानों पे परफॉर्म किया है, अगर आज आपको कहा जाए नीतू जी को एक रोमांटिक गाना डेडिकेट करने के लिए, तो आप कौन सा करोगे? जी हाँ, तो सामने से ऋषि जी कहते हैं कि अच्छा, पर गाना डेडिकेट क्यों करूं मैं? जी हाँ, ऋषि जी बिंग ऋषि जी, उन्होंने ऐसे कह दिया कि गाना डेडिकेट क्यों करूं मैं। तो सामने से होस्ट कहते हैं कि अरे सर, आपकी बीवी है, ऐसे ही कर दीजिए, और क्या मतलब, इसके लिए आपको कोई मौका या वो थोड़ी चाहिए, इवेंट थोड़ी चाहिए, आप कर सकते हैं। तो ऋषि जी सामने से हंसते हुए कहते हैं कि ठीक है, अगर मुझे आज नीतू को कोई गाना डेडिकेट करना होगा तो मैं कहूंगा खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे। जी हाँ, तो सामने से होस्ट करता है कि अच्छा, ये तो बात बनी नहीं कुछ, क्योंकि आप ही ने कहा था कि हम तुम एक कमरे में बंद हो जाएं और चाबी खो जाए, अब आप ये कह रहे हैं कि खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे। कहते नहीं नहीं, वो तो बहुत पुरानी बात है, पहले की बात है। तो होस्ट कहते हैं हाँ भाई, बात तो बनती है, क्योंकि तब आप सिर्फ 18-20 साल के थे जब आपने कहा था कि हाँ हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। और फिर जिंदगी से सीखता है इंसान, फिर बात तो सही है भाई, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे। ऋषि जी आगे भी कहते हैं कि भाई मैं यही कहूंगा कि खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे, मतलब प्यार करना है तो खुल्लम खुल्ला कीजिए, ऐसे छुप छुप के करने से क्या बनेगा। जी हाँ, तो ये थे ऋषि जी आपके लिए, और ऋषि जी की बातें, उनके ट्वीट आज भी लेजेंडरी है, लेट मी टेल यू। इसी के साथ यहाँ पर एक बड़ा ही जबरदस्त सा गाना मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ, लेकिन ये मेरी तरफ से नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, ये है एक फरमाइशी गीत जो कि हमारी नई लिसनर की तरफ से आया है। जी हाँ, परमजीत कौर जी की तरफ से आया है, और ये जस्सी जी की वाइफ हैं जिन्होंने अपना फेवरेट गाना यहाँ पर फरमाइश किया, और गाने का नाम है मामला गड़बड़ है, और ये गुरदास मान साहब, लेजेंडरी गुरदास मान साहब का गाया हुआ गीत है। तो थैंक यू सो मच परमजीत जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इस खूबसूरत सी और जबरदस्त सी फरमाइश के लिए, कि मतलब गाना ऐसा फरमाइश करो कि मतलब आपको डांस करना पड़ जाए सामने वाले को। ऐसे ही फरमाइशें करते रहिए और ऐसे ही सुनते रहिए, क्योंकि आप नए हो, तो मैं कहूंगी कि आप हमारे प्रोग्राम को सुनिए और भी फरमाइशें कीजिए, और अपना साथ हमारे साथ यहाँ बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार देते रहिए। ये रहा आपका ये जबरदस्त सा गाना जो कि बहुत ही खतरनाक है।

भाई मामला तो गड़बड़ है, लेकिन मामले को सही कैसे किया जाए? वेल ऑफ कोर्स एक और मजेदार गाना प्ले करके। वेल ये गाना पहले ही बहुत ज्यादा बढ़िया है, लेकिन गाने के लिरिक्स जो है वो बड़े ही फनी हैं और खतरनाक है। मामला गड़बड़ है, ओ ओ मामला गड़बड़ है। जी हाँ, इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा आपको टाटा बाय बाय करने वाले हैं हम। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा ऐसे तुमने इतना माहौल बनाया कि अब पता नहीं हमें क्या बताने वाली हो। तुम्हें टाटा बाय बाय करना था तो सीधा सीधा बोल देती ना। चलो ठीक है, कर दो अब। चलिए ठीक है, इसी के साथ घड़ी ने कर दिया इशारा तो मैं जा रही हूँ, लेकिन वापस आऊंगी कल। आपको क्या करना है? आपको मजे करने हैं, फन करने, इस बारिश को एंजॉय करना। मैं हमेशा कहती हूँ बारिश में कुछ सुनना, कुछ अच्छा सा खाना और कुछ अच्छा सा पढ़ना, सब अच्छा लगता है। इनफैक्ट बारिश की आवाज में सोना भी बहुत अच्छा लगता है। सो ट्राई इट एंड लेट मी नो आपको कैसी लगी। और इसी के साथ सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए

एक बहुत ही खास फरमाइश, जी हाँ, मेरे बहुत ही खास लिसनर विशाल जी की तरफ से है। जी हाँ, एंडिंग भी हमारे प्रोग्राम की एक फरमाइश से हो रही है। इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। इससे पता चलता है कि हमारे लिसनर्स हमारे इस प्रोग्राम को कितना प्यार करते हैं। एंड थैंक यू सो मच, इट मीन्स अलॉट अलॉट। ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए। एंड थैंक यू सो मच विशाल जी इस खूबसूरत सी फरमाइश के लिए। और आप सबको मेरे लिसनर्स, बाय, सी यू, टाटा, मिलना होगा अब आपसे कल, बाय।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। 2032 ओलंपिक से पहले ब्रिस्बेन के कमर्शियल प्रॉपर्टी मार्केट में आया भारी उछाल, ब्रिस्बेन के लिए एक बहुत ही शानदार खबर है। साल 2032 में होने वाले ब्रिस्बेन ओलंपिक से ठीक पहले यहां के कमर्शियल प्रॉपर्टी मार्केट ने रफ्तार पकड़ ली है। वहीं ब्रिस्बेन में खेले गए ADF रग्बी चैंपियनशिप में सेना का दबदबा। ब्रिस्बेन के एश ग्रोव में स्थित GPS रग्बी क्लब में ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स यानी कि ADF रग्बी चैंपियनशिप का शानदार आयोजन हुआ। इसमें एयरफोर्स और नेवी की महिला टीमों ने हाथ मिलाकर आर्मी की टीम का मुकाबला किया। वहीं नेशनल चैंपियनशिप में चमके ब्रिस्बेन के स्विमर्स। मास्टर्स स्विमिंग ऑस्ट्रेलिया नेशनल चैंपियनशिप में ब्रिस्बेन और आसपास के डिफेंस मेंबर्स और लोकल स्विमर्स ने पानी में अपनी रफ्तार का जलवा बिखेरा। वहीं ASX का सिंपली से बाहर होना चर्चा में फाइनेंस की दुनिया से ब्रिस्बेन और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ी खबर है। ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एक्सचेंज ने सिंपली में अपनी 49% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। इसी के साथ ब्रिस्बेन में कड़कड़ाती ठंड की शुरुआत, मौसम विभाग का अलर्ट। मौसम के मिजाज की बात करें तो ब्रिस्बेन में ठंड ने पूरी तरह दस्तक दे दी है। सुबह और रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं वीकेंड के लिए ब्रिस्बेन के साउथ बैंक पर खास फूड फेस्टिवल की तैयारियां शुरू। और चलते चलते एक मजेदार खबर है ये, आने वाले वीकेंड को शानदार बनाने के लिए ब्रिस्बेन के मशहूर साउथ बैंक पर एक स्पेशल विंटर फूड फेस्टिवल की तैयारियां आज से शुरू हो गई हैं। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह का सीमा सुरक्षा पर बड़ा ऐलान। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने बीकानेर में एक बड़े सुरक्षा प्लान का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि अगले 6 महीने के भीतर देश की सीमाओं पर एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम पूरी तरह से तैनात कर दिए जाएंगे। वहीं कोल इंडिया में सरकार बेचेगी अपनी हिस्सेदारी, बिजनेस की दुनिया से बड़ी खबर है। भारत सरकार ने सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड में अपनी 2% हिस्सेदारी बेचने का बड़ा फैसला किया है। वहीं राजधानी दिल्ली में धूल और प्रदूषण के खिलाफ नया एक्शन प्लान। दिल्ली में हवा की क्वालिटी सुधारने और उड़ती धूल से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने एक सख्त कदम उठाया है। सरकार ने 5 बड़े रास्तों कॉरिडोर्स को नए सिरे से डेवलप करने का काम शुरू किया है। वहीं दिल्ली को मिला हरियाणा से एक्स्ट्रा पानी, संकट से थोड़ी राहत। दिल्ली में पानी की बढ़ती किल्लत के बीच एक राहत भरी खबर है। हरियाणा सरकार ने दिल्ली के लिए इमरजेंसी वाटर रिलीज कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के कई इलाकों में पानी की भारी कमी देखी जा रही थी। वहीं नीट पेपर लीक केस में नया मोड़, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट पेपर लीक मामले में एक बड़ा अपडेट आया है। इस केस में गिरफ्तार किए गए कोचिंग सेंटर के फाउंडर के नाबालिग बेटे को पुलिस अपना स्टार विटनेस यानी मुख्य गवाह बना सकती है। वहीं यूपी में तकनीकी खराबी के कारण SSC एग्जाम कैंसिल। उत्तर प्रदेश के कुछ परीक्षा केंद्रों से निराशा करने वाली खबर है। यहां चल रहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम को कुछ सेंटर्स पर अचानक टेक्निकल फॉल्ट यानी कंप्यूटर और सर्वर में आई खराबी के कारण कैंसिल करना पड़ा है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले रूस ने बनाया खतरनाक इबोला वायरस के नए स्ट्रेन का टीका। मेडिकल साइंस की दुनिया से एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर आई है। रूस के वैज्ञानिकों ने कांगो और युगांडा में फैल रहे इबोला के एक नए और खतरनाक स्ट्रेन के खिलाफ एक नई वैक्सीन तैयार करने का दावा किया है। वहीं अफ्रीका से आने वाले यात्रियों के लिए कनाडा ने लागू किए सख्त नियम। इसी इबोला संकट को देखते हुए कनाडा सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। कनाडा ने फैसला लिया है कि इबोला प्रभावित देशों से आने वाले सभी यात्रियों को देश में एंट्री करते ही 21 दिन के लिए सख्त आइसोलेशन में रहना होगा। वहीं बायजूस के फाउंडर को सिंगापुर में 6 महीने की जेल की सजा। एजुकेशन टेक कंपनी बायजूस के फाउंडर बायूज रविंद्रन की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सिंगापुर की एक अदालत ने एसेट डिस्क्लोजर ऑर्डर्स यानी अपनी संपत्तियों की सही जानकारी ना देने और अदालती आदेशों की अनदेखी करने के मामले में उन्हें 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। वहीं अमेरिका में केमिकल टैंक फटने से बड़ा हादसा, एक की मौत। अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य से एक दुखद दुर्घटना की खबर है। वहां के लॉगब्यू में स्थित एक पैकेजिंग मिल में एक बड़ा केमिकल टैंक अचानक फट गया। इसी के साथ 80वें जन्मदिन से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को बताया सुपर फिट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले कुछ दिनों में अपना 80th बर्थडे मनाने वाले हैं। इससे ठीक पहले उन्होंने अपनी ताजा मेडिकल रिपोर्ट शेयर करते हुए दावा किया कि वो परफेक्ट हेल्थ में हैं। वहीं नेटफ्लिक्स की मशहूर सीरीज के पीछे की मर्डर मिस्ट्री सुलझी, आरोपी को सजाए मौत। नेटफ्लिक्स की ब्लॉकबस्टर सीरीज थ्री बॉडी प्रॉब्लम को बनाने वाले चाइनीज गेमिंग बिलियनेयर की हत्या के मामले में चीन की अदालत ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले फ्रांस ओपन में भारतीय अमेरिकी खिलाड़ी निशेष वसावरेडी ने रचा इतिहास। पेरिस में चल रहे फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट से एक ऐतिहासिक खबर है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़कर प्रोफेशनल टेनिस में आए भारतीय मूल के खिलाड़ी निशेष वसावरेडी ने दुनिया के टॉप 10 खिलाड़ी टेलर फ्रिट्स को हराकर तहलका मचा दिया है। वहीं आईपीएल 2026 रजत पाटीदार के तूफान में उड़ा गुजरात आरसीबी फाइनल में। आईसीसी और आईपीएल के दीवानों के लिए कल की रात आरसीबी के नाम रही। रजत पाटीदार ने सिर्फ 33 गेंदों में नाबाद 93 रनों की आतिशी पारी खेलकर गुजरात टाइटंस के बॉलिंग अटैक को तहस नहस कर दिया। वहीं आज आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स की महाभिड़ंत होने वाली है। इसी के साथ चेस किंग्स मैग्नस कार्लसन ने खुद को के खेल पर कसा अजीब तंज। शतरंज की दुनिया के बेताज बादशाह मैग्नस कार्लसन अपने एक अजीब बयान को लेकर चर्चा में हैं। एक मैच के दौरान एक आसान चाल चूकने और चेकमेट करने के बजाय क्वींस को करने के लिए उन्होंने अपने ऊपर तंज कसा है। इसी के साथ नॉर्वे चेस 2026 में भारत के प्रज्ञा नंदा और गुकेश की धमाकेदार शुरुआत। ओस्लो में शुरू हुए नॉर्वे चेस 2026 टूर्नामेंट में भारत के युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञा नंदा और डी गुकेश ने अपने पहले ही दौर के मैचों में शानदार जीत की दर्ज की। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वा।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
2: कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर। याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
6: बियॉन्ड व्हाट यू सी Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance. owned outright. Transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are. Qplate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

रोल भी होगा, ग्रुप भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूब ऑफ 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन। ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलनगाबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

हां जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो दसवानी वन सन वन एम ते जी आप जी संदेश और अलग दिनाल तुसी बने हुए हो। देखो बॉलीवुड दी चकाचौंध पर दुनिया विच शोहरत कमाउण दे लई सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि एक दमदार नाम दा होना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि अक्षय कुमार कैटरीना कैफ सैफ अली खान वर्गे इंडियन सिनेमा दे कई वड्डे सितारियां ने परदे ते कदम रखण तो पहला अपना असली नाम बदल दिता सी। इन्हां नूं लग्या कि फिल्म इंडस्ट्री दे मिजाज अते दशकां नाल जुड़ाव दे हिसाब नाल उन्हां दे जन्म दे नाम उन्ने असरदार नहीं है, इसलिए उन्होंने खुद नू नवा स्क्रीन नेम दिता जिस नाल अगे चल के उन्होंने घर घर विच पहचान बनाई है कि बिल्कुल सही। भारतीय सिनेमा विच रजनीकांत अक्षय कुमार कैटरीना कैफ वर्गे कई अजिहे नाम हैगे ने जो कामयाबी दी सब तो वड्डी गारंटी हैगे ने। ए बिल्कुल सच गल हैगी है जी कि इन्होंने नाम बदले हैगे ने ते अज ओ वड्डा नाम कमा रहे हैगे ने। किन्ना किन्ना दे असली नाम की हैगे ने शायद थानू नहीं पता होना, पर कोई गल नहीं टेंशन नहीं लैनी। मैं दस दी एक एक करके, पर पहला सुनो एक गीत।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो, जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड।

0: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading
1: Containers for Change
0: के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धन राशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिनकॉइन कहते हैं। अपने बिनकॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.9 ते जी आरचे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगला जेड़ा नाम है इस लिस्ट विच जेड़ी मेरे कोल है कि उस विच है जी रजनीकांता, सुपरस्टार रजनीकांत। रजनीकांत असली नाम की है, बहुत नहीं पता होना, जिन्होंने नहीं पता मैं दस दिनी हाँ। असली नाम है रजनीकांत दास शिवाजी राव गायकवाड़। जद उन्होंने कर्नाटक की फिल्मी दुनिया विच कदम रखिया सी ना, तां उन्हां दा नाम बदल दिता गया। इंडस्ट्री विच उन्हां दे गॉडफादर ते मशहूर डायरेक्टर के बालाचंदर ने उन्हां नूं रजनीकांत नाम दिता। ओ सिनेमा दे परते दे लई कदमदार ते यादगार नाम चाहुंदे सी, इसलिए उन्हां ने अपनी एक फिल्म दे किरदार तों प्रेरित होके ए नाम चुनिया। इस नाम ने अगे चल के भारतीय सिनेमा दा इतिहास बदल दिता है।

जी अनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो बसानी बनसन वन एम ते जी अच्छे संदेश अलग दे नाल तुसी बने हुए हो। हुण गल आउंदी है जी ग्लैमर क्वीन दी। ग्लैमर क्वीन कौन है तुसी समझ गए होंगे, वो है जी कैटरीना कैफ। जी हां ग्लैमर क्वीन कैटरीना कैफ जो हुण एक मां बन चुकी है बहुत ही प्यारे जे बच्चे दी। कैटरीना कैफ हैगी है जी विक्की कौशल दी वाइफ ते बहुत ही शानदार एक्ट्रेस। तुहानू पता है कैटरीना कैफ का असली नाम की है? नहीं पता, मैं दस दी रही हां। कैटरीना कैफ का असली नाम है जी कैटरीना चारकाटी। जब उन्होंने भारत आके अपनी मॉडलिंग अते एक्टिंग करियर की शुरुआत की ना तो उन्होंने अपना सरनेम बदल के मां का सरनेम कैफ अपनाया है। यह बदलाव खास तौर पर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री नूं ध्यान विच रख के किया गया ताकि नाम थोड़ा सौखा हो जाए तो देश के आम दर्शक उन्होंने नाम नूं आसानी नाल बोल सकन अते लंबे समय तक याद भी रख्या जा सके।

0: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
0: कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
2: सम नंबर्स कैरी वेट बियॉन्ड व्हाट यू से। Q11700 द मास्टर नंबर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, अ हेरिटेज क्वींसलैंड प्लेट, फर्स्ट इश्यूड इन 1922, अ पीस ऑफ क्वींसलैंड हिस्ट्री विद फुल प्रोवेनेंस, ओन्ड आउटराइट, ट्रांसफर रेडी। For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
3: Na tere varga aashiq vekhya, na tere vargi aashiqi.
4: ARY Films and Salman Iqbal present Love This Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love This Song in cinemas this Eid-ul-Adha, May 27th.
5: Oh, yara, main bahut worried haan. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
6: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
5: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
6: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
7: Hi, this is Amitabh Bachchan. Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
8: Hi guys, I'm Madhvit from the Meat Brothers. Aap sun rahe hain Radio Briswani.
9: Hi, this is Salman Khan. Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
10: Hi, this is Deepika Padukone. Aur aap sun rahe hain Radio Briswani. To everyone, tune

0: कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 1071 एम ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल तुसी बने हुए अगला जेड़ा नाम हैगा इस लिस्ट दे विच ओ ता हदल चहेता है क्योंकि उन्हां दा 2.5 किलो का हाथ कौन पुल सकता है जी हाँ नाम है जी सानी देओल दा अपने 2.5 किलो के हाथ दे लई मशहूर सानी देओल दा असली नाम अजय सिंह देओल है जद उन्होंने फिल्म विच डेब्यू किया तो मेकर्स अते उन्होंने मिलके स्क्रीन नेम सनी चुनिया उस दौर विच मन्या गया है कि यह नाम दर्शकों के विचकार ज्यादा कैची कूल अते फ्रेंडली लगेगा वक्त दे नाल यह नाम लोगों की जुबान ते इस कदर चढ़ गया कि अज फैंस तो दूर इंडस्ट्री विच भी शायद ही कोई उन्होंने उन्होंने असली नाम के नाल बुलाउंदा होवेगा

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: जी आयन जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा थोड़े अपने चाहते वाले रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाणी 107.1 FM संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगला जेड़ा नाम है वह है जो बहुत ही खूबसूरत जी अदाकारा दा 90s दी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत अदाकारा है ते आज भी एवरग्रीन है उन्हीं खूबसूरती बरकरार है। नाम है जी तपू। जी हाँ, अपनी बेहतरीन अदाकारी दे लई मशहूर एक्ट्रेस तपू दा नाम पहला कुछ होर सी, थोड़ा औखा सी, पर मैं तुहानू दस दिंदी हां नाम सीगा जी तबसुम फातिमा हाशमी। जद उन्होंने फिल्मों में एंट्री ली ना तो अपने इस वड्डे नाम नू छोटा करके तबू रख लिया। उन्होंने लग्या कि वड्डे पर्दे दे लिहाज नाल ये नाम काफी क्रिस्प छोटा ते एक मजबूत स्क्रीन प्रेजेंस वाला रहेगा। नाम बदलन दा एक फैसला फिल्म मेकर्स दे लई मार्केटिंग दे हिसाब नाल काफी सौखा रहा ते इस नाल उन्होंने यूनिक पहचान भी बनी रही।
1: मुंडा साधुआ

0: अमिताभ बच्चन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
1: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स एंड आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
5: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
7: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: अरे मोटा सा दूंगा।

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बसोनी 101 एम ते जी आप जे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगला नाम हैगा जी ओ सैंडसम हंगताज, बॉलीवुड दे विच कई सालां तो छाए हुए है कि ने, अज भी उसे तरीके दे नाल ने ते फिटनेस दा तां उन्हां दी दा कोई तोड़ ही नहीं। नाम हैगा जी जॉन इब्राहिम। बॉलीवुड दे हैंडसम हंक जॉन इब्राहिम दा असली नाम पता नहीं? पता तो मैं दस दिनी। जॉन इब्राहिम का असली नाम हैगा जी फरहान इब्राहिम। जी हाँ, मॉडलिंग के दिनों विच ते फिल्मों विच आउण तो ठीक पहला उन्होंने अपना फर्स्ट नेम बदलन का फैसला लिया। उन्होंने जॉन नाम चुनिया क्योंकि इस सुनने विच काफी सिंपल मॉडर्न ते इंटरनेशनल लगता है। नाम दे इस छोटे जे बदलाव नाल उन्होंने मॉडलिंग कैंपेन तो लेके बॉलीवुड फिल्मा तक हर जगह एक बेहद वखरा ते मजबूत पहचान दवाउण विच मदद मिली सी।

0: भैया नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
0: सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

हाँ जी जी आया जी पर बेड़ा हो चुके हैं तो टाटा बाय बाय कहता जी आया फिर भी कह लिया क्योंकि एक नाम बहुत ही इंपोर्टेंट सी जिस बारे थानू दसना बेहद जरूरी सी। मैं सोचा जान तो पहला उन्होंने बारे थानू दस ही दिनी है तो वह नाम है चीफ रेखा जी। हाँ बॉलीवुड की एवर क्वीन ब्यूटी रेखा ता असल नाम रेखा नहीं सी असल नाम सी जी भानु रेखा गणेशन। उन्होंने जब उन्होंने सिनेमा की दुनिया विच कदम रखिया ना तो उन्होंने अपना नाम छोटा करके सिर्फ रेखा रखना पिया। ए नाम ना सिर्फ बेहद सिंपल अते एलीगेंट सी बल्कि आम दर्शकों के लिए इस नूं याद रखना भी काफी सौखा सी। अगे चल के सिर्फ एक नाम वाली अनोखी पहचान भारतीय सिनेमा के इतिहास विच सब तो आइकोनिक शख्सियतां विचों एक बार की हैगी है। इस गल दे नाल तां मेरे ख्याल सारे ही सहमत ने। बाकी थोनू के कौन एक्टर है जिसका असली नाम ज्यादा वधिया लग्या हैगा है चेंज किते हुए नालों वो तुसी सानू जरूर दस्यो। रेडियो ब्रिसोनी वन सरो वन एम साड़ फेसबुक पेज है जिते ब्रिसोनी एट ब्रिसोनी डॉट कॉम साड़ी ईमेल आईडी है जरिए जेड़ा भी अपनाना हो अपनाओ पर साडा गल्ला बात जरूर करते रहा करो है ना। तां फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो ते मैं हुणे वापस आउनी आ ना ना ना ना कल वापस आउनी आ करन दे लई ठेर सारियां गल्लां ते चलो फिर जाण वेले इक्को गल कहणी है कि रखो अपना ख्याल सत श्री अकाल।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

ज्ञान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

ना आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख ना चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

सोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मोर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं। यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दो।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

अमूल्य है। इस जीवन में हमें जो कुछ मिला है वो सब अमूल्य है, और वो सब हमें प्राप्त हुआ है उस ऊपर वाले की कृपा और उसकी रहमत से। उसी रहमत को धन्यवाद देने के लिए, उसका शुक्रिया कहने के लिए, उसके लिए ग्रैटिट्यूड देने के लिए अपने जीवन आधार के सफर में आज हम और आप फिर से एक साथ आ गए हैं। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ सताक्षी आज एक बार फिर से। और जीवन एक ऐसा भंवर है जिसे पार करने के लिए एक बेस की, एक आधार की बहुत जरूरत है, और वो हमें मिलता है तब जब हम अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं, अपने ईश्वर को प्राप्त करना शुरू करते हैं और उसकी ओर बढ़ना शुरू करते हैं, हम मनुष्यता को प्राप्त करते हैं। आइए आज ऐसे ही एक सफर पे फिर से अपने जीवन के आधार को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं जीवन आधार में रेडियो ब्रह्मवाणी 1701 एम पर सताक्षी के साथ, और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे इस अगले गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए मेरे साथ।

जीवन आधार आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 पर और आपके साथ इस सफर में सताक्षी है। धैर्य यानी कि पेशेंस सीखा कई बार है लेकिन समझ हम और आप नहीं पाते हैं, लेकिन धैर्य जो इंसान रखता है, जो इंसान पेशेंस रखता है, वही इंसान जीवन में तरक्की कर पाता है, वही इंसान जीवन में वो सब कुछ हासिल कर पाता है, पा पाता है जो वो पा सकता है, और वो भी अपनी इच्छा के अनुसार। अगर आप भी अपने मन मुताबिक चीजें पाना चाहते हैं तो धैर्य रखिए। आज बेशक आपके हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन अगर धैर्य और मेहनत आप रखेंगे, यानी कर्म अपने अच्छे रखेंगे और पेशेंस रखेंगे, ऊपर वाले पर भरोसा रखेंगे, तो निश्चित तौर से आज ना सही लेकिन आप जीवन में वो सब हासिल कर पाएंगे जो असल में आप डिजर्व करते हैं और आप पाना चाहते हैं। आइए इसी बात पर एक और गीत को यहाँ पर सुनते हैं। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए सताक्षी के साथ।

सुबह के कुछ अमूल्य विचार जीवन आधार में इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्थानी 1701 एम पर। और इन विचारों में आपके साथ सताक्षी भी अपने कुछ विचार घोल रही है और इस सफर को और भी खूबसूरत बना रही है। सुनते रहिए जीवन आधार और यूं ही रहिए मेरे साथ।

अक्सर हम डर जाते हैं जब लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं, अक्सर हम घबरा जाते हैं, हमें लगता है कि अब कैसे ही हम इस जीवन में आगे बढ़ेंगे या हम कैसे कुछ भी जिंदगी में कर पाएंगे। तो देखिए, जिंदगी में घबराइए नहीं, डरिए नहीं, क्योंकि आपके साथ वो खड़ा है जो इस दुनिया में सबसे बड़ा है। याद है ना कि कैसे भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ खड़े हो गए थे और अपनी पूरी सेना को भी कौरवों को दे दिया था, उसके बाद भी जीत पांडवों की हुई। इसलिए जब आपके साथ वो ऊपर वाला खड़ा है तो फिर डर भय किस बात का है। आप जीवन में सही कर्म करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए और बाकी सब कुछ उस पर छोड़ दीजिए। आइए इन्हीं विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए सताक्षी के साथ।

सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं जीवन के आधार को, यानी कुछ ऐसी बातों को जो आपकी सुबह को भी खास बना रही हैं और सुबह में ऐसा रस घोल रही हैं जो मिठास का रस है, प्रभु भक्ति का रस है, ईश्वर की प्राप्ति का रस है और उस ऊपर वाले पर विश्वास का रस है। इसी रस के साथ, इसी भक्ति रस के साथ आगे बढ़ेंगे। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए सताक्षी के साथ।

लोग आपसे ये उम्मीद करते हैं कि उनकी हर बात पर आप रिएक्ट करें, श्रोताओं हर बात पर आप बोलें। अक्सर लोग आपको उकसाते भी बहुत हैं, बहुत परेशान करते हैं कि आप बोलें कोई बात हो और फिर लोगों के आगे तमाशा बने। लेकिन ऐसी जगह पर मौन धारण कर लेना, मौन हो जाना, शांत हो जाना, इससे अच्छा कोई साधन नहीं है। लोगों के तीखे शब्द, तीखे बाण आपको लगते जरूर हैं, लेकिन बस इतनी बात समझने की जरूरत है कि वो आपको इसलिए उकसा रहे हैं ताकि आप पलट कर वार करें, आप अपने शब्दों का वार करें और फिर वो मौन हो जाएं और आप चिल्लाते रहें और वो उसका मजा लें। इसलिए ईश्वर पर कहते हैं ना, कभी कभी चीजें छोड़ देनी चाहिए, और मौन धारण करना ऐसे लोगों के लिए खासकर सबसे बड़ा सबक होता है। आइए इसी सबक के नाम ये अगला गीत सुनते हैं, और सुनते रहिए जीवन आधार, आपके साथ है सताक्षी।

कटाक्षी के साथ जीवन को समझने की एक कोशिश आज एक नई सुबह हम और आप मिलकर कर रहे हैं, फिर से जीवन आधार के खास सफर में। इसी सफर में आगे बढ़ेंगे, अभी एक और गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए कटाक्षी के साथ।

चुंबक लोहे प्रीति है, लोहे लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। रेडियो प्रसानी 1701 AM पर जीवन आधार के सफर में श्रोतागण आप हैं सताक्षी के साथ। चुंबक को देखा है ना, मैग्नेट आयरन से उसकी अजब सी मोहब्बत है, ऐसे चिपकता है उससे कि लोहे को भी उठा लेता है। इसी तरह से हमारे शब्द भी हैं। कितना ही कठोर इंसान हो, कितना ही पत्थर दिल इंसान हो, अगर आप उससे मिठास से बोलते हैं, अगर आप उससे प्यार से बोलते हैं, तो आप उसे अपना मीत बना लेते हैं। हमारे शब्दों में वो ताकत है ना कि हम किसी को जान से मार भी सकते हैं और किसी को काल के ग्रास से छुड़ा भी सकते हैं, किसी को मरने से बचा भी सकते हैं। इसलिए हमेशा अच्छा बोलिए, मीठा बोलिए, प्यारा बोलिए, ताकि लोग ऐसे जुड़ जाएं जैसे लोहा मैग्नेट से जुड़ जाता है, चुंबक से जुड़ जाता है। आइए इसी बात पर, कबीरदास जी की इसी बात पर आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार, आपके साथ है सताक्षी।

श्रोताओं, ये था आज एक और जीवन की आधार का हमारा और आपका साथ जीवन आधार, जिसमें आप सताक्षी के साथ थे। एक ऐसे ही सफर पर कल फिर से आपके साथ चलूंगी, आपके साथ कुछ अनुभव अपने साझा करूंगी और कुछ मॉर्निंग थॉट्स ऐसे आपके लिए लेकर आऊंगी जो आपकी सुबह को और भी खूबसूरत बनाएंगे और ईश्वरीय शक्ति के साथ आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के सफर से अब लेते हैं इजाजत। नमस्कार।

हेलो मेरे प्यारे श्रोताओं, नमस्ते, अदाब, सत श्री अकाल, अदाब। आप सभी सुन रहे हैं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे चांदनी जैन को। प्रोग्राम चांदनी का सफर शुरू हो चुका है, लेकर आ चुकी हूँ। और दोस्तों, आज है थर्सडे, यानी थर्सडे आ ही गया है, मतलब वीकेंड गेट के बाहर खड़ा है, बस एंट्री का वेट कर रहा है। तो दोस्तों, चलिए फिर एक घंटे तक आप सभी मेरे साथ एंजॉय करने वाले हैं, जिसमें मस्त वाइब्स होगी, क्रेजी फैक्ट्स होंगे, फिल्मी तड़का होगा और थोड़ी सी हंसी होगी, जो कि बनती है। तो चलिए फिर टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने इस सिलसिले को, अपने इस सफर को हंसते हंसते शुरू करते हैं इस गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो ब्रसवानी।

कैसा लगा आप सभी को ये गीत? वैसे मुझे कुछ याद आया, आपको पता है सुबह का सबसे सबसे ज्यादा डेंजरस सेंटेंस क्या होता है? याद कीजिए, हम बचपन से बोलते आ रहे हैं। चलिए मैं ही आप सभी से शेयर करती हूँ, वो डेंजरस सेंटेंस होता है बस 5 मिनट। जी हाँ, जब हम सो रहे होते हैं और हमारे पेरेंट्स हमें उठा रहे होते हैं तो हम क्या कहते हैं, बस 5 मिनट, बस 5 मिनट थोड़ा और सोने दो, होता है ना ऐसे? फिर क्या होता है, जैसे ही हमारी आंख 5 मिनट से ज्यादा टाइम पर खुलती है और फिर कोई ऑफिस के लिए लेट हो रहा होता है, कोई स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा होता है, मतलब इतने पैनिक हो जाते हैं, तो उस टाइम तो तूफान आ रहा होता है ना? आपके साथ भी ऐसा होता है ना? 5 मिनट मतलब हमारी जान ही ले लेती है, लेकिन वो 5 मिनट की नींद ना बहुत प्यारी होती है ना? ऐसी नींद मतलब पूरी रात नहीं आती, लेकिन जो वो 5 मिनट्स की नींद होती है ना, बहुत मजा और बहुत ही आनंद दिलाता है। तो आइए इसी आनंद के साथ आपको सुनाते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी में प्रोग्राम चांदनी का सफर। तो आइए कुछ हॉट न्यूज टॉक कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की एक बड़ी खबर सामने आई है। ऑस्ट्रेलिया की पॉप क्वीन काइली मिनॉग को ऑफिशियली AFL ग्रैंड फाइनल एंटरटेनमेंट के लिए अनाउंस किया गया है और फैंस ऑलरेडी सुपर एक्साइटेड है। मतलब मैच से पहले ही कॉन्सर्ट वाली फीलिंग आने वाली है। तो आइए फिर इसी के साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

वाह क्या गीत था, आपको भी पसंद आया होगा। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रसवानी। तो आइए अब थोड़ी सी आईपीएल की बात कर लेते हैं। दोस्तों इंडिया साइड से आईपीएल का फीवर जो है अभी भी फुल ऑन चल रहा है। आरसीबी ने आईपीएल 2026 फाइनल में आखिरकार एंट्री मार ही ली है और सोशल मीडिया पर फैंस का एक्साइटमेंट जो है वो अलग लेवल पर है। सच बोलो इंडिया में क्रिकेट सिर्फ गेम नहीं है, फैमिली इमोशन है। जी हाँ, लोग इतने एक्साइटेड हो जाते, इतने एक्साइटेड मतलब पूरा आप लोगों को जो मैच ग्राउंड है ना वो पूरा फुल मिलेगा और वो भी बिल्कुल जोश के साथ। जी हाँ, और ऐसा ही होना चाहिए। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी सुन रहे हैं चांदनी का सफर प्रोग्राम। दोस्तों, वैसे मेरी बातों के साथ साथ कॉफी का कप तो हाथ में होगा ही, है ना? नहीं है तो फटाफट बना लीजिए। वैसे जो ऑफिस जा रहे हैं उनको कॉफी की खुशबू मैं यहीं से दे देती हूँ। आप वैसे ही इमेजिन कर लो कि आप कॉफी पी रहे हो, वरना आप मुझे डांटोगे कि ये कॉफी के साथ चिढ़ा रही है और हमें तो कॉफी पीने को मिल नहीं रही। तो कोई बात नहीं, आप और मैं कॉफी पी रहे हैं और आप ड्राइव भी करते रहे। दोस्तों, एक क्रेजी फैक्ट आपके सामने लेकर आई हूँ। एक व्हील जर्नी रिसेंटली रिकॉर्ड हुई जो ऑलमोस्ट 14,000 किलोमीटर से भी ज्यादा थी, और वो क्वींसलैंड से ब्राजील तक की थी। मतलब साइंटिस्ट ने इसे लॉन्गेस्ट व्हेल जर्नी बोला है। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, बाय गॉड, मैं अगर इतना ट्रैवल कर लूँ ना तो मेरी बैक पेन लीव एप्लीकेशन डाल देना। वैसे देखिए कितनी हैरानगी वाली बात है ना, मतलब इतना स्टैमिना है कि 14,000 किलोमीटर से भी ज्यादा, ओ माय गॉड। तो दोस्तों, व्हेल को मामूली मत समझना। तो चलिए इसी के साथ जाते जाते एक बात बताइए, आप सभी से एक सवाल आपकी दोस्त चांदनी पूछती है। आपका ऐसा फेवरेट फूड कौन सा है जो आप कभी छोड़ ही नहीं सकते, यानी कि कभी बोर नहीं हो सकते, आपको जितनी बार मिल जाए आप मतलब एंजॉय करके खाते हो? फटाफट से मुझे मैसेज करके बताइए कि आपका फेवरेट फूड कौन सा है। तब तक के लिए सुनिए ये गीत, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

वाह, क्या खूबसूरत गीत आप सभी को सुनाया है और आई होप कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों देखिए, लाइफ में ना स्ट्रेस तो सबके पास है, पर जो फ्री है वो है एक प्यारी सी स्माइल। जी हाँ, तो देर किस बात की है, तो फिर थोड़ा सा मुस्कुराए, गाना एंजॉय करें और थर्सडे को हैवी नहीं हैप्पी बनाइए। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त हो चला है आप सभी से टाटा बाय बाय कहने का। और दोस्तों एक वक्त आप सभी को देते हैं जबरदस्त गाना सुनने का, तो वॉल्यूम बढ़ाओ, मूड फ्रेश करो और याद रखो वीकेंड बस कॉर्नर पे वेट कर रहा है, आने वाला है। सो एंजॉय योर लाइफ एंड एंजॉय योर डे। टेक केयर, बाय बाय, सुनते रहिए रेडियो ब्रसवानी।

नमस्कार, मैं साक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्तानी 1701 AM। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ड्रग्स तस्करी में शामिल नाव पर अमेरिकी सेना का हमला, एक की मौत। अमेरिकी सेना ने पूर्वी प्रशांत महासागर में नशीले पदार्थों की तस्करी के संदेह में एक नाव पर हमला किया जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। दक्षिणी कमान ने कहा है कि उसने अमेरिकी तटरक्षक बल को सूचित किया है ताकि बचे लोगों की खोज और बचाव प्रणाली को सक्रिय किया जा सके। ट्रंप प्रशासन द्वारा लैटिन अमेरिकी जल क्षेत्रों में कथित तौर पर नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले नावों को निशाना बनाया जा रहा है। चीन ने गेमिंग टाइकून को जहर देने के आरोप में एक व्यक्ति को दी फांसी, 2020 में की थी हत्या। चीन ने अरबपति गेमिंग टाइकून को जहर देकर हत्या करने के दोषी को फांसी दे दी है। जू याओ को शंघाई स्थित योजू गेम्स के संस्थापक लिन क्यूई की हत्या का दोषी पाया गया था। लिन की योजू गेम्स के पास चीनी लेखक लियू सिक्सन के उपन्यास के फिल्म रूपांतरण का अधिकार है जिस पर नेटफ्लिक्स ने थ्री बॉडी प्रॉब्लम सीरीज बनाई थी। नशीली दवा, यौन संबंध और ब्लैकमेल का खेल, यूके में भारतीय मूल के न्यूरोसर्जन पर गंभीर आरोप। ब्रिटेन के यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ऑफ वेल्स में काम करने वाले भारतीय मूल के न्यूरोसर्जन डॉक्टर चिराग पटेल पर गंभीर आरोप लगे हैं। पटेल पर हॉस्पिटल में एक मरीज के साथ जबरन यौन संबंध बनाने और बिना रिकॉर्ड नशीली दवाओं के आरोप में रहने के लिए डॉक्टरी प्रैक्टिस से सस्पेंड कर दिया गया है। यूके के मेडिकल कदाचार ट्रिब्यूनल ने इस मामले में गंभीर अनैतिक तथ्य पाए। बीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर पटेल पर एक महिला के साथ अनुचित संबंध बनाने और ओपिओइड और अन्य नियंत्रित दवाएं लिखने का आरोप लगा है। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण कराना चुनाव आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में कोई खामी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग के उस फैसले को सही ठहराया है जिसके तहत बिहार में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू किया गया था। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने यह फैसला दिया है कि एसआईआर प्रक्रिया को केवल इसलिए एक्स्ट्रा वायर्स करार देकर नहीं रद्द किया जा सकता क्योंकि ये मतदाता सूचियों के संशोधन की सामान्य प्रक्रिया से अलग है। समंदर में भारतीय नेवी का पराक्रम, आईएनएस कोलकाता की ताकत देख भागे समुद्री लुटेरे, बड़ा हमला नाकाम। भारतीय नौसेना ने पश्चिमी हिंद महासागर में एक व्यापारी जहाज के पास संदिग्ध समुद्री लुटेरों की गतिविधियों की सूचना मिलने पर तुरंत

कार्यवाही की। नौसेना के युद्धपोत INS कोलकाता ने तेजी से जांच कर संभावित समुद्री डकैती की कोशिश को विफल कर दिया। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: on 1701 Brisbane. It's your morning drive show with your host Amita and Jatish. सुबह का सफर आपके हम सफर जतीश और अमिता।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सभी का प्यार भरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। और आप जिसे जानते हैं, मैं सोलो चल रहा हूं इस समय, और जो मेरा को होस्ट है छुट्टी पर है। खैर चलो, आप लोग साथ दे रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ इंटरनेट में बहुत से लोग आ गए हैं, थैंक यू सो मच। और अच्छा लग रहा है आपको देखकर, मैं देख रहा हूँ बहुत दूर दूर से लोग हैं। वाओ, कनाडा, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत लोग सुन रहे हैं भाई, क्या बात है। और हॉलैंड से, हॉलैंड में कौन होगा बताइए, प्लीज सेंड मी अ मैसेज। आए चलिए कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हमारा वेदर क्या कह रहा है दोस्तों। लेकिन वेदर से पहले देख लेते हैं रास्ते पर क्या हो रहा है। बारिश हो रही है दोस्तों, आज भी बारिश है, अभी हम बताएंगे आपको वेदर। 16 मिनट्स अगो हेल स्ट्रीट पेडिंगटन स्टेशनरी व्हीकल है यहाँ पर, लाइन और लाइन को रिड्यूस किया गया है दोस्तों। और स्ट्रेट पाइन रोड बोल्ड हिल्स मल्टी व्हीकल क्रैश हुआ है, वन लेन ब्लॉक्ड। वाओ, तो पैसिफिक मोटरवे ग्रीन स्लोप क्रैश नॉर्थ बाउंड, ये जो हुआ था ये क्लियर हो गया है दोस्तों। और बस इतना ही है हमारे पास। आज के लिए कहा गया है कि रेन पॉसिबल स्टॉर्म भी कहा गया है। आज भारी बारिश होगी दोस्तों, 20-45 मिलीमीटर कहा गया है, 18-21 अधिक से अधिक 21 रहेगा आज। कल के लिए कहा गया है पार्टली क्लाउडी लेकिन बारिश नहीं होगी दोस्तों, 14-23 रहेगा। सैटरडे को सनी रहेगा, 15-23 नो रेन। संडे को भी कहा गया है कि बारिश नहीं होगी, 13-23 रहेगा नो रेन। मंडे को कहा गया है कि सनी, 11-21 रहेगा नो रेन। ट्यूसडे को सनी, 11-23 नो रेन। और वेंसडे को 15-25 नो रेन। तो ये रहा हमारा वेदर। तो चले दोस्तों, मैंने कहा था नहीं, पहले फिजी न्यूज सुन लेते हैं। और फिजी न्यूज में कहा गया है फिजी में फ्यूल प्राइसेस और कॉस्ट ऑफ लिविंग को लेकर चिंता बढ़ रही है दोस्तों। अपोजिशन ने वार्निंग दी है कि फ्यूल क्राइसिस और महंगाई आम लोगों पर और प्रेशर डाल सकती है। अथॉरिटीज ने कहा है कि फिजी का जो फ्यूल सप्लाई अभी मई और जून तक स्टेबल रहेगा और नया शिपमेंट आने को है। शायद तब जो वो है क्या कहते हैं, शायद बंद हो जाए, क्योंकि अभी आप देखिए बहुत कम लड़ाई हो रही है समय समय से। अभी कल परसों शायद उन्होंने किया, क्योंकि ये जो इनका आर्म्स डिप्लीट हो रहा है दोस्तों बहुत, इसराइल और अमेरिका का। जी हाँ, और कल मैं कुछ सुन रहा था इसराइल पर लोग क्या क्या करते हैं। इसराइल इज नॉट अ गुड कंट्री, आई एम सॉरी टू से दैट, दे नॉट गुड पीपल व्हाट दे आर डूइंग। मैं ओपनली कह रहा हूँ, बहुत सता रहे हैं वहां पर जो बाकी लोग रह रहे हैं, उनसे घर छीन लेते हैं, और कोई ऐसा लॉ नहीं है कि उनको बचा सके। एवरीथिंग इज फॉर द इज़राइल पीपल। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए ने फिजी में एक नया पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अनाउंस किया है। इससे पैसिफिक रीजन में ट्रेड और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन स्ट्रांग होने की उम्मीद है। तो चलो भैया, फिजी में तो बैठे बैठे सब कुछ हो रहा है, इधर चाइना दे रहा है, इधर ये जो क्वाड दे रहे हैं, क्या बात। फिजी में ऑर्गेनाइज क्राइम और ड्रग ट्रैफिकिंग को लेकर कंसर्न और गहरा हो गया है। ऑस्ट्रेलिया की AFP को डर है कि सेंसिटिव इंटेलिजेंस ड्रग कार्टेल्स तक लीक हो सकती है। और रग्बी अपडेट, साउथ अफ्रीका के जूनियर स्प्रिंगबॉक्स ने फिजी U20 टीम को केप टाउन मैच में 82-25 से हरा दिया है। जी हाँ, और फिजी में रिसेंट ठंडी रातों का भी जिक्र हो रहा है दोस्तों। कुछ एरियाज में ओवरनाइट टेम्परेचर्स काफी लो रिकॉर्ड किए गए हैं। और पार्लियामेंट में एजुकेशन मिनिस्टर ने कन्फर्म किया कि मिसकंडक्ट एलिगेशंस के बेस्ड बाद इन्वेस्टिगेट किया गया 16 स्कूल प्रिंसिपल्स को वापस पोस्ट पर भेजा गया है। बस चलो आज के लिए इतना ही, बहुत है दोस्तों। और क्या, और आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्विज जो मैंने पूछा था आपसे अभी, आज का कोई नया क्विज अभी मैं नहीं सोचा हूं, लेकिन जो कल का क्विज था, क्विज हाँ, एक आशिक अपनी महबूबा से कहता है, मैंने सिर्फ प्यार मांगा था, मुझे मना मत करो। दोस्तों मैंने पूछा था कि बताइए इस मशहूर गाना की लाइन है, इसके बताइए। तो एक ही प्रभा जी, आपने सही आंसर दिया अभी तक, तो मैं देख रहा हूं और कोई और नहीं आया है। तो ये जो गीत है दोस्तों, ये गीत ने बप्पी लहरी ने म्यूजिक दिया है, शायद आपको मालूम होगा। बप्पी लहरी और किशोर कुमार का जो रिश्ता सिर्फ म्यूजिक का नहीं था दोस्तों, वो फैमिली में भी थे। किशोर कुमार बप्पी लहरी के मटर्नल अंकल यानी उनका मामा था, और इसीलिए बप्पी लहरी हमेशा उसे मामा कहता था, जानते हैं आप। तो कौन सा गीत है? जी हाँ, प्यार मांगा था।

से ना इनकार करो, यही था हमारा क्विज, क्विज और एक ही सही आंसर मिला था। और चले जब क्विज की बात कर रहे हैं तो आज के लिए भी पूछ लेते हैं, ठीक है। और आज का जो जो मैं पूछूंगा, आप बताइए कौन सा गीत है, ठीक है। ये गाना आज ही बजा देंगे क्योंकि कल मैं नहीं रहूंगा, कल नीलम है और शनिवार को परमा भाई है, तो आई विल प्रॉब्ली संडे, देखते हैं। और अगर नहीं, संडे थोड़ा टफ पड़ जाता है दोस्तों, क्योंकि बहुत कुछ करना पड़ता है। और लेकिन मंडे तो शुआ में रहूंगा, दो हफ्ता और बचा है इसके बाद कि मैं अकेला प्रोग्राम लेकर आऊंगा। आई डोंट नो वेदर यू गाइस लाइक इट और नॉट, मुझे लगता है कि ठीक ही है, चलो आप लोग साथ दे रहे हैं। अच्छा तो चले, एक पुराना रोमांटिक गाना है, ठीक है। हीरो महफिल में है लेकिन जो उसकी नजर सिर्फ एक चेहरे पर टिकी है, ठीक है। गाने के बोल इशारा करते हैं कि दुनिया में बहुत चेहरे हैं लेकिन उसके दिल को सिर्फ एक ही पसंद आया है। बताइए कौन सा गीत है, ठीक है। फिर से बोल दूं? जी हाँ, हीरो हीरो जी हीरो महफिल में है लेकिन उसकी नजर सिर्फ एक चेहरे पर टिकी है। गाने के बोल इशारा करते हैं कि दुनिया में बहुत चेहरे हैं लेकिन उसके दिल को सिर्फ एक ही पसंद है, जी एक ही पसंद आया। तो बताइए कौन सा गीत है दोस्तों, रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं, आपकी अपनी पहचान। और अगला जो गीत है ये पुराना गीत नहीं है लेकिन एक बार मैंने बजाया था रेडियो पर, और अभी कल ही शायद कोई मुझसे पूछ रहा था कि जतीश भाई कौन वो गीत बजा दीजिए। हमने बहुत ढूंढा और हम दोनों मिलकर बहुत देर में इस गीत को हम फिर से याद किए दोस्तों, लेकिन ये नया गीत है और जहाँ तक मैं जानता हूँ ये नया गीत है, तो सुनते हैं दोस्तों। कितनी बेचैन हूँ मैं ये यार से मिलने के लिए।

0: मिल
1: कितनी बेचैन हो बे यार से मिलने के लिए। देखिए दोस्तों, रशिया यूक्रेन वो जो है और तेज, जी हाँ मैंने सोचा था कम है लेकिन तेज हो रहा है। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से और एयर डिफेंस मिसाइल मांगे हैं क्योंकि रशिया के मिसाइल अटैक्स कंटिन्यू हो रहे हैं और यूरोप के कई कंट्रीज ने रशिया के डिप्लोमेट्स को वार्निंग भी दी है आफ्टर थ्रेट लिंक टू कीव अटैक, जो अटैक हुआ उसके बाद में। तो ये तो अमेरिका का और डिप्लीट करेगा एमिनेशन और ये जो सब डिफेंस के लिए। और यूरोप में डेंजरस हीट वेव चल रहा है, यूके स्पेन फ्रांस में रिकॉर्ड ब्रेकिंग गर्मी चल रही है दोस्तों। स्पेन में टेम्परेचर्स ऑलमोस्ट 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है, क्या बात है भाई। और फ्रांस में हीट रिलेटेड डेथ्स भी रिपोर्ट हुई है। साइंटिस्ट बोल रहे हैं क्लाइमेट चेंज इसका मेजर रीजन है। अच्छा क्लाइमेट चेंज, तो हाँ क्लाइमेट चेंज बहुत अफेक्ट हो रहा है दोस्तों। वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ विंटर वी विल हैव। खैर चलो अगला जो गीत है दोस्तों, ये गीत लता और मुकेश जी नहीं मुकेश और आशा भोसले, यहाँ पर गलत लिखा होगा शायद, ये आशा भोसले और लिरिक्स आनंद बख्शी और डायरेक्ट किया है म्यूजिक राजेश रोशन ने। फिल्म तुम्हारी कसम फिल्माया गया था नवीन निश्चल और पद्मनी, जी हाँ पद्मनी कपिला के साथ। तो चलिए इस गीत को सुनते हैं दोस्तों। नंबर है 04300031701।

बहुत ही प्यारा गीत था दोस्तों, मुझे अच्छा लगा, उम्मीद है आपको भी उतना ही अच्छा लगा होगा। रेडियो विजवानी आप सुन रहे हैं, आपकी अपनी पहचान। अगला जो गीत है, लता जी ने इस गीत को गाया है दोस्तों, सुनते हैं। जैसे आप जानते हैं, मैंने कहा था आज हम पुराने गीत लेकर आएंगे।

उम्मीद है दोस्तों गीत आपको पसंद आ रहे हैं। ठीक है, देखिए मिडल ईस्ट टेंशन के वजह से ऑयल प्राइसेस फिर से काफी बढ़ गया है और रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेंट क्रूड, जी हाँ ब्रेंट क्रूड अराउंड $100 पे बैरल तक हो गया है, जिससे पेट्रोल और फ्यूल प्राइस दुनिया भर में इम्पैक्ट हो सकता है। तो देखिए दोस्तों ये तो मालूम नहीं कब तक चलेगा, लेकिन चलेगा तो चलेगा, क्या करेंगे। अगला जो गीत है दोस्तों, इसमें जो हीरो है ये कुंपया कर रहा है, जी हाँ ये बड़ा बहुत अच्छी तरह से कुंपया कर रहा है एक स्वान से। स्वान आप जानते हैं ना, बड़ा ग्रेसफुल चिड़िया जो पानी में रहता है उसके साथ, और बहुत प्यार से बुला रहा है और उसके जो ब्यूटी और चार्म को वो डिस्क्राइब कर रहा है इस गाने में। वन ऑफ किशोर कुमार्स बेस्ट सॉन्ग्स कहा गया है, बहुत सॉफ्ट रोमांटिक और इसमें ड्रीमी फीलिंग्स है दोस्तों, और अगर आप सुनेंगे आपको खुद भी पता चल जाएगा किशोर कुमार ने बहुत अच्छे तरह से इस गीत को उन्होंने गाया है। ओ हंसनी टुका उड़ चली।

जी हाँ दोस्तों, जहरीला इंसान का गाना भी आपने सुना, किशोर कुमार ने गाया था और मजरू सुल्तानपुरी ने इसको लिखा था आर डी बर्मन के संगीत पर। शायद आपको याद होगा ऋषि कपूर और मौसमी चटर्जी। मौसमी चटर्जी सच क्या बोलूँ मैं, अपलिफ्टिंग एंड शी इज़ अ कॉमेडियन। जी हाँ, बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनका इंटरव्यू देखता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हुए, कांगो में इबोला आउटब्रेक कंसर्न जो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो में इबोला केसेस बढ़ने लगी है दोस्तों, और हेल्थ एक्सपर्ट्स टेंशन में है कि कॉन्फ्लिक्ट एरियाज और माइग्रेशन की वजह से डिजीज और स्प्रेड हो सकती है। तो ये तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन चलो दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है दोस्तों, और क्या करेंगे। चले किशोर कुमार का गाया हुआ गाना एक बार फिर, आज किशोर कुमार छाया हुआ है फिर। जी हाँ, वो मन चली कहाँ चली।

और दोस्तों थोड़ा देर हो गया है लेकिन चलो फिर भी आज अगर आज आपका जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे कहना चाहूंगा, और अगर वेडिंग एनिवर्सरी है जो जो कुछ भी आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ लवली डे, ठीक है। और देखिए दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है ना, जो आपके पास है, मेरे पास है, आई थिंक आई हैव वन, अभी बड़ा फोगी लग रहा है, ये रात को सोते जब सोते वक्त भी ये एक्टिव रहता है, और कभी कभी जागते जो वक्त हम अपना यूज करते हैं ब्रेन, उससे भी ज्यादा काम करता है जब ये सो रहा, जब हम सो रहे हैं। क्या आप विश्वास करोगे इस बात का? जी हाँ, ये बात सच है दोस्तों। तो चलिए, कभी हम जो हमारे स्लीप्स होते हैं, जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, समटाइम्स वी डू रिमेम्बर देम, डोंट वी? और फिर हम सोचते हैं यार ये कैसा सपना हमने देख लिया। क्या आपके साथ ऐसे होता है दोस्तों? क्या चलो गाना सुनते हैं।

जी हाँ दोस्तों, रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं, आपकी अपनी पहचान, और मैं हूँ जतीश पूरन, आपका साथ दे रहा हूँ। वैसे मेरे साथ अमिता रहती है, लेकिन अमिता छुट्टी पर है। और देखिए दोस्तों, जब सूरज हमारे पास जब सूरज हम देखते हैं ना, जो आता है हमारे पास, तो ये 8 मिनट रखता है फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन। 8 मिनट में आता है, सोचिए कितना दूर है हम। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, हमारे जो ह्यूमन बॉडी में जो क्या कहते हैं, इतने ब्लड वेसल्स है, अगर उसको हम सीधा कर ले सब ब्लड वेसल को, तो कहते हैं कि दुनिया के 2 बार चक्कर लगा सकता है, इतना ज्यादा वेसल्स हमारे अंदर है। वुड यू बिलीव दैट? बट दिस इज अ फैक्ट, ऐसे कह रहे हैं। तो खैर चलो, अगला जो गीत है दोस्तों, साथी चलो।

और मुझसे फिर पूछा गया कि आज का क्विज क्या है। जी हाँ, एक पुराना रोमांटिक गाना है, हीरो महफिल में है लेकिन उसकी जो नजर सिर्फ एक चेहरे पर टिकी है। गाने के बोल इशारा करते हैं कि दुनिया में बहुत चेहरे हैं लेकिन उसके दिल को सिर्फ एक ही पसंद आया। कौन सा गीत है दोस्तों? कम ऑन, आई एम श्योर यू कैन टेल मी। बताइए कौन सा गीत है। चलिए रफी साहब और आशा भोसले से सुनेंगे आप, दिल उसे दो जो जा दे दे।

जी हाँ दोस्तों, फिल्म अंदाज से इस गीत को आपने सुना मोहम्मद रफी और आशा भोसले से। रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान। और कहते हैं कि जिंदगी में खुशी रहने का एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है दोस्तों, एक्सपेक्टेशंस कम रखें और ग्रेटिट्यूड ज्यादा। और इंसान की असली पहचान उसकी बातों से नहीं, जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा हूं ना, आप मुझे नहीं पहचान पाओगे। जी हाँ, इंसान की असली पहचान उनकी बातों से नहीं, उसके बिहेवियर से, बिहेवियर से होती है। ठीक है, बिहेवियर बारे में अब क्या बताऊं मैं आपसे। बस मैं ये कह सकता हूं इस गीत में देखो, और मजाक कर रहा हूं दोस्तों आपके साथ, अच्छा लग रहा है।

0: तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों, यही था वो गाना। खैर हम आगे बढ़ते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे बड़े प्यारे दोस्त शमशेर भाई। शमशेर भाई सलाम अलैकुम।
1: सलाम अलैकुम जतीश भाई, मेरा प्यार भरा सलाम तमाम हमारे सुनने वालों को भी। और आगे बढ़ने से पहले जतीश भाई बस यही कहूंगा, आज सबको हमारा ईद मुबारक यार।
0: ईद मुबारक भैया, कैसे हैं सब? हाँ, मुझे तो पता भी नहीं चला यार, ठीक भी आप लेकर आ गए।
1: हाँ वक्त ऐसे भागता है ना।
0: हाँ देखो,
1: हाँ तो बस महीना, आज तो ईद है, लोग मना रहे हैं ईद है ना।
0: जी जी जी जी जी।
1: और जतीश भाई सब ऐसे ठीक है, खैरियत है ना?
0: सब ठीक है भैया, सब चल रहा है और कोई कंप्लेन नहीं, सब कुछ ठीक है।
1: अच्छा
0: और
1: अच्छा
0: कंप्लेन क्या कंप्लेन करेंगे, है कि नहीं?
1: कुछ नहीं, कुछ होता नहीं है कंप्लेन करने से ना।
0: जो कुछ मिलता वही लिखा है हमारे लिए। कभी दुख तो कभी सुख।
1: ये तो लगा है, ये तो लगा है बिल्कुल। पर एक बात बताऊं जतीश भाई,
0: जी
1: उस पाक परवरदिगार को, उस मालिक को, उस भगवान को यार शुक्र है कि हम लोग ही देश में है भैया।
0: ओ यस, वेरी वेरी ट्रू।
1: उसको कितना भी शुक्र अदा करो यार, कम है भाई साहब।
0: हाँ ये तो बहुत लकी कंट्री में है हम।
1: हाँ यार,
0: ये बात तो मैं जानता हूँ, क्योंकि शमशेर भाई मैं तो काफी जगह, वैसे अमेरिका में रहा काफी दिन, तकरीबन 20 साल। और आई टेल यू, हम यहाँ पर बहुत लकी है, हमारा मेडिकल सब कुछ सब कुछ है यार यहाँ पर। इट्स अ वेरी वेरी लकी कंट्री है। कब तक ऐसा रहेगा आई डोंट नो, बट अगर हम सब इसी तरह इसको रखेंगे तो शायद अच्छा होगा ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल जतीश भाई, इसी पे मैं एक दो बात आज कहना चाहता हूँ।
0: जी
1: खास करके जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं जो जा रहे हैं 65+ में, एक उनको एक इतला दूं, एक बताऊं कि आज जब 65 हो जाते हैं लोग, तो अगर बीमार है तकलीफ है तो उनको ऐश किया बहुत भारी हेल्प करता है।
0: अच्छा।
1: हाँ हर एक तरह से जतीश भाई, उस उनका जो हेल्प है कोई अंदाज नहीं है। हम अच्छा? अभी हम जिंदगी में इतना टैक्स भरते थे और कहते थे यार इतना टैक्स भर रहे हैं हमेशा हमेशा, लेकिन अगर उस दिन आप आओगे वहां पे और जब ऐश किया के मिलने लगेगा तमाम सर्विस, आप कहोगे यार हमने टैक्स कम भरा है भैया।
0: हाँ ये बात तो सही है।
1: हाँ,
0: किसी को तो भरना पड़ता है ना।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: सही बात है दोस्त।
1: तो एक चीज मैं इतला कर दूं, हमारे तमाम भाई हैं बहनों है वहां पे यार सुन रहे हैं, कि आज एज किया का वेटिंग लिस्ट है अप्रोक्स 2 इयर्स।
0: अच्छा,
1: तो आज अगर आप लोग बीमार हैं, महसूस हो रहा है कि यार अगले 6 महीना में तकलीफ और ज्यादा बढ़ेगा, तो आप 1-1800 नंबर है एज किया के, रिंग करके आप उसमें अपना डाल दो सिस्टम में कि मैं नीड करता हूँ हेल्प। तो वहां से कम यार 12-18 महीना लगेगा तब के वो लोग आपके पास फिर से आएंगे और पूछेंगे कि आपका बीमारी क्या है, डॉक्टर के लेटा है, 2-4 चीज लेंगे, फिर वो अप्रूव कर देंगे, तो पेमेंट आपका शुरू होगा वहां से फिर 8 महीना कम से कम बाद में।
0: तो काफी टाइम घिंचेगा इन अदर वर्ड्स, या
1: बहुत लंबा टाइम, कम से कम 2 साल अगर आज आप कर दो जतीश भाई, तो कम से कम 2 साल वेट करना पड़ेगा। तो यही मैं अपने भाई बहनों को बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसे हैं आप लोग तो प्लीज आप लोग इसको रजिस्टर कर दो सी अपना।
0: राइट, ओके ओके। देखिए इसमें से दो बात है, मैं सोच रहा हूँ किस चीज के लिए मैं करूँ। अभी तक तो ठीक है, बट आई नो व्हाट यू आर सेइंग। अगर थोड़ा सा बैक प्रॉब्लम है मेरा, ये नहीं कि नहीं, बट वैसे बहुत से लोग हैं जो जैसे भी आपने कहा अभी आपको शुरू कर देना चाहिए, और हाँ ताकि फैमिली मेंबर्स जानेंगे आपके बारे में ज्यादा, शायद आप उतना नहीं जानोगे, क्योंकि हमें नहीं पता चलता बहुत जगह हमारे पास हमारे साथ कुछ हो रहा है, लेकिन फैमिली मेंबर्स लोग देखते हैं ना, वो समझते हैं कि हाँ शायद इनका याददाश्त खराब हो रहा है या कुछ दिन में और खराब हो जाएगा, ऐसे कुछ बातें हाँ, लेकिन एक सबसे बढ़िया बात है, नाउ आई विल नॉट फील बैड पेइंग माय टैक्सेस शमशेर भाई।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: अब आप थोड़ा मेरे दिल में वो कर दिया है। जी जी, तो बड़ा अच्छा लगा भाई। और कुछ बताइए, और कुछ, ये बहुत अच्छी जानकारी। जी हाँ
1: जतीश भाई, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, खास करके जो हमारे एल्डरली पीपल है यार
0: जी,
1: सबके पास जरूर दो चार डोला है, घर होगा जरूर से जतीश भाई
0: जी,
1: जो दो चार डोला है मैं उनको यही बताऊंगा कि भाई अगर ज्यादा है, मिलियंस में है जतीश भाई, तो चलो अपने बच्चों को दे दो 50,000, 10,000, 2,000, जो कुछ ठीक है चलो, लेकिन अगर उतना ज्यादा नहीं है तो प्लीज आप विल बना दो, पर बच्चों को अभी मत दो जतीश भाई।
0: ये तो सही बात है, तो मेरे गुरुजी भी कहते हैं कि जब तक आप जीवित है तब तक आप ये गलत काम मत करना।
1: हाँ जी, हाँ जी जतीश भाई, हम बहुत लोगों को अभी देख रहे हैं, उनका हालात क्या है कि बच्चे उनके करीब नहीं है, बहुत गिरा दिन से जा रहे हैं, मालूम है।
0: जी हाँ शमशेर भाई, मैं भी जानता हूँ, लेकिन एक समय था आप दे सकते थे, लेकिन अब कुछ जमाना ऐसा पलटा है दोस्तों कि खुद कभी अपने जो है अपने नहीं होते है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल जतीश भाई, अगर आपके पास दो डोला पैसा है, ठीक, मिसाल के तौर पे, तो आप कहोगे ए पीटा कम हिया, जॉन कम हिया, हिया टेक $100, गो एंड गेट मी दिस एंड दिस एंड दैट है
0: जी।
1: अगर आपके पास वो पैसा भी नहीं है जतीश भाई, तो आप घर में बैठ के तरस जाओगे
0: जी। सही
1: तो
0: बात है।
1: दिन के नहीं करो, आप लोग को मैं ये सलाह देता हूँ वेरी सीरियसली जतीश भाई।
0: जी जी जी जी,
1: और एक बार दोबारा सोचो, हाँ विल बना दो
0: जी हाँ,
1: और उनको ये भी बता दो जतीश भाई कि आखिरी मिनट पे अगर आप लोग हमारा साथ नहीं दिया, माँ बाप के साथ नहीं दिया, उनको लुकावटा नहीं किया, तो ये विल लास्ट मिनट पे भी मैं चेंज कर दूंगा।
0: जी जी जी,
1: चला जाएगा कोई के दान, कोई के मस्जिद या मंदिर में या कहीं पे भी।
0: जी, जी जी जी, सही बात सही बात, सही कहा आपने दोस्त, बहुत सही कहा आपने। डोंट, जैसे आपने कहा, थोड़ा कुछ मदद अगर है कर सकते तो कर दो, लेकिन अपना पूरा पैसा मत देना जब तक आप जीवित है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: बिल्कुल, क्योंकि और अगर दोनों परानी है तो जो लास्ट में जाएगा उसके बाद में ये वितरण कर सकते हैं, ऐसे बनाना होगा। जी, बहुत बहुत सही कहा शमशेर भाई, ये वार्निंग है, इट्स अ टॉपिक दैट पीपल डोंट वांट टू टॉक अबाउट, लेकिन दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि बुढ़ापा पर कौन देखेगा, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। और चलो, गवर्नमेंट के बगल से कुछ मदद है, और कुछ कभी काल आपको जेब से भी कुछ लगेगा थोड़ा कुछ, तो उसके लिए आप बचा कर रखे ना।
1: जी हाँ जतीश, एक चीज और मैं बता दूं कि गवर्नमेंट का कुछ हेल्थ जो एज केयर में चेंजेस आया है, ये नवंबर से, लास्ट ईयर जो नवंबर चला गया है।
0: जी जी जी,
1: अगर आपके पास एसेट है ज्यादा और पैसा है बैंक में, तो उस हिसाब से उन लोगों ने आपको कुछ ना कुछ भरना पड़ेगा।
0: जी जी जी, सही,
1: अंटिल सितंबर तक आपको कुछ भरना नहीं रहा।
0: अच्छा, बट दैट मेक सेंस दो शमशेर भाई ना।
1: अगर आपके
0: पास है तो गवर्नमेंट, आई मीन कहां तक किसको मदद, यू नो, आई मीन देयर सो मेनी पीपल दैट नीड हेल्प, सो हाँ, खाली सीनियर नहीं, बहुत से लोग जो होमलेस भी है उनके लिए भी करना है, तो गवर्नमेंट पर काफी बर्डन है, तो सबको कुछ ना कुछ देना ही है। जी
1: जरूर जरूर, जतीश भाई अगर पैसा है तो कुछ लगाया अपने से भी, तो क्या फर्क है यार?
0: कुछ फर्क नहीं यार, लेकर तो जाए, लेकर जाएंगे नहीं हम
1: जतीश भाई, सेकंड में रह जाएगा, सेकंड में, यकीन करो, जो हमारे लोग सुन रहे हैं, हमारे दोस्तों, हम देख रहे हैं, हमारे यार दोस्त पलवार ऐसे सेकंड में चले जाते हैं, सब कुछ छोड़ दिए,
0: जिसको कभी हमने सोचे नहीं थे ना कि वो चले
1: नहीं, कभी सोचते भी नहीं जतीश भाई। और एक बात मैं बताऊं, जब 60-70 इधर आईटी में आ जाता है, तो जो गड्ढा है कब्र का ना, वो बिल्कुल दिख रहा है, खाली कितना जल्दी कितना जल्दी वहां पहुंचेगा यही नहीं पता यार।
0: मैं यही करता हूँ शमशेर भाई, जैसे थोड़ा आता उसको मैं दफा कर देता हूँ, मैं नहीं सोचता हूँ। लेकिन बात तो सही है, बैक ऑफ द माइंड हमेशा रहता है ना, पहुंच जाते हैं कि ना जाने कब आज उठोगे कि कल उठोगे कि नहीं उठोगे, वी डोंट नो, है कि नहीं, क्या है हमारे अंदर, क्या हो रहा है, कौन जानता शमशेर भाई।
1: बिल्कुल बिल्कुल जतीश भाई, हम गए थे वो जो फंक्शन था उसका क्या नाम, गिरमिट वाला।
0: जी जी जी जी जी
1: यार, कई लोगों ने मिला यार, और आकर मिले, और बहुत अच्छा लगा यार।
0: अच्छा। कि
1: अभी भी लोग इतना करीब हैं यार,
0: याद कर रहे हैं ना।
1: हाँ जी हाँ जी, कोकिला आ गया, मैं तो उसको चेहरा देखा तो चीन नहीं पाया मैंने।
0: अच्छा अच्छा,
1: हाँ और भी कई लोग आए थे यार, तो, बड़ा अच्छा लगा जतीश भाई।
0: तो किसी ने कुछ चर्चा किया आपसे दो फूल के बारे में?
1: सब सब यही कहते हैं यार, आ जाओ एक बार फिर से थोड़ा सा ना।
0: आ जाओ क्यों नहीं,
1: जाओ आना चाहिए ना।
0: जी हाँ, अभी सुबह में क्या करेंगे, थोड़ा यही मजाक मजाक करेंगे, लोग को हंसाएंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल यार,
0: हंसाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ
1: हाँ,
0: चलो सबसे भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: तो जतीश भाई, आप जब के ईद का महीना है जतीश भाई
0: जी,
1: तो क्यों नहीं आप यार, आप तो बहुत फास्ट है मैं जानता हूँ कंप्यूटर में, एक यूसुफ आजाद का कव्वाली है, चलो चलो हज का महीना आ गया।
0: चलो चलो हज का महीना आ गया,
1: हाँ जी, और आप उसको बजाओ। इसी के साथ में हम तमाम यार दोस्त को, सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम और ईद मुबारक जतीश भाई।
0: अच्छा, आपको भी, आपको भी भैया, थैंक यू। चलो अच्छा, मुझे मिल गया है, मैं बजा देता हूँ, और उम्मीद है आप लोग, ये है यूसुफ आजाद से ना।
1: जी हाँ जी हाँ।
0: अच्छा ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू शमशेर भाई,
1: थैंक यू,
0: ओके भैया, बाय। चलो दोस्तों, बहुत प्यारा सा गीत है, सुनते हैं, इस पर है।

याद इसकी खलीलुल्लाह पैगंबर ने है डाली, यही तो है मुसलमानों का किबला, इसी जानिब तो हम करते हैं सजदा।

0: रंगे अस्वत मलक करते हैं इस पर नाज बेहद। हमारा भी ताल्लुक है हरम से, हमारा फर्ज कहता है ये हमसे कि हम भी चूम ले जाकर ये पत्थर, यकीनन जाग उठेगा मुकद्दर। चलो तुम भी मुकद्दर आजमा लो, उठो जल्दी उठो ईमान वालो, चलो चलो
1: म्यूजिक ट्रैक की फखरिया पेशकश।

0: गोल भी होगा, ग्रुप भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में क्यूबॉन्ग 2026।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
2: दोस्तों कहते हैं कि टाइम सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है। जी हाँ, टाइम बदलने के लिए, क्या बात। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस गीत को सुनते हैं। फिल्म तेरी कसम से लिया गया है।

और दोस्तों आपको याद दिला दूं कि कल सुबह का जो प्रोग्राम होगा वो नीलम के साथ, तो भूलना मत। और फिर शनिवार सुबह को आप परमा भाई के साथ हो जाएंगे, लेकिन इस कार्यक्रम के बाद में आप सताक्षी के साथ रहेंगे और 11 बजे से संदेश के साथ पंजाबी प्रोग्राम और 3 बजे से दिव्या के साथ आप कार्यक्रम को सुनेंगे। और देखिए, कहते हैं कि जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन अगर फैमिली, दोस्त और सुकून हो तो जिंदगी खूबसूरत जरूर होती है। क्या बात। और फिर मुस्कुराहट मुफ्त होती है दोस्तों, लेकिन उसकी जो वैल्यू है बहुत महंगी होती है। जी हाँ, रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं।

जी हाँ दोस्तों, चलो ये गाना बजा दिया था मैंने आपके लिए, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और अगला जो गीत है एक सुमन कल्याणपुर और रफ़ी साहब से आप सुनेंगे, बेटी बेटे का गीत है दोस्तों, और बहुत प्यारा गीत है दोस्तों। जी हाँ चलो सुनते हैं। अगर तेरी जलवा नुमाई ना होती,

जी हाँ दोस्तों, अगर तेरी जलवा, जलवा का मतलब होता है दोस्तों ग्लो, और अगर नुमाई ना होती तो फिर क्या बात है, उसका प्रेजेंस ना होता तो ऐसे ब्यूटीफुल नहीं होते हम।

मैं चली दोस्तों, और आगे बढ़ते हुए इस समय बस जी हाँ 9:15 बज गया है। हमारा साथ 9 बजे तक रहेगा दोस्तों, और फिर उसके बाद में आप सताक्षी के साथ हो जाएंगे। तो कार्यक्रम सुनते रहे दोस्तों।

रेशमी जुल्फ शरबती आंखें, इसे देखकर जी रहे हैं सभी। क्या बात है भाई, क्या डिस्क्रिप्शन है। जी हाँ, रेडियो बिजलानी आप सुन रहे हैं दोस्तों।

जी हाँ दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं और अगला जो लास्ट गाना है आप सभी के लिए। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी को शुक्रिया दोस्तों आज के जो प्रोग्राम को सुनने के लिए। आपका साथ हमारे लिए बहुत खास होता है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, जितने भी हमारे अनाउंसर्स हैं आपका साथ बहुत खास होता है दोस्तों। उम्मीद है आपको आज का जो ये सेगमेंट पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नया प्रोग्राम के साथ मंडे को, ठीक है? तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए, जैसे पहले कहा था मैंने, ठीक है? गुड बाय एंड टेक केयर।

सुबह की ताजगी से भरे खास अंदाज में एक खास सी जर्नी लेकर एक बार फिर से हाजिर है आपकी सताक्षी और कहती है आपको गुड मॉर्निंग अजी। कैसे हैं आप सब? ये फटाफट से हमें बताना शुरू कीजिए हमारे रेडियो प्रसवानी के फेसबुक पेज पर। और मैं आपको बता देती हूँ कि इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं इट हैपेंस में। जी हाँ, आपके अपने ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस में इस वक्त आप सताक्षी के साथ हैं और मेरे साथ कई बेहतरीन गाने हैं, सुबह की कई खास बातें हैं जो आज एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए, बहुत बातें करनी है, बहुत

वेलकम बैक रेडियो प्रसवानी पर, आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ इट हैपेंस। और इसके पहले कि हम अपनी जर्नी की शुरुआत करें, विश करते हैं उन्हें जिनका आज बहुत ही खास दिन है। सो जिनका आज हैप्पी बर्थडे है, भाई विश हमारी यही है कि आज के दिन की तरह ही आप बहुत खुश रहें पूरे साल और आपकी हर जायज ख्वाहिश मुकम्मल हो, आपको हर जायज चीज जो आप चाहते हैं जरूर मिले। जिनके लिए आज का दिन स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज उनकी शादी की सालगिरह, तो बस वो विश्वास वो प्यार एक दूसरे में बनाए रहिए जो आज आप ढूंढ रहे हैं एक दूसरे में, और जिंदगी के हर मुश्किल रास्ते में साथ साथ चलते रहिए। इसी विश के साथ विश करेंगे उन्हें भी जिनके लिए आज का दिन स्पेशल और खास इसलिए है क्योंकि आज उन्हें जिंदगी से कुछ उम्मीदें हैं या कुछ आज खास उनकी जिंदगी में होने वाला है। आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबके लिए ये अगला ट्रैक डेडिकेट करने जा रही हूँ, इंजॉय कीजिए इसे और सुनते रहिए इट हैपेंस सताक्षी के साथ। एक बार फिर से आपको गुड मॉर्निंग।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
2: कल मेरी शादी है, आज

वेलकम बैक, इट हैपेंस, एंजॉय कर रहे हैं प्रीति ब्रिस्वानी 1701 एम्पर, और आपके साथ आज एक बार फिर से है साक्षी। वैसे अक्सर जब लोगों के साथ कुछ गलत हो गया होता है तो आप ये कह देते हैं कि जो हो गया उसे भूल जाओ। ये कहना कि जो हो गया है उसे भूल जाओ, ये शायद सामने वाले के लिए बहुत आसान होता है, हमारे और आपके लिए बहुत आसान होता है, बट असल मायनों में जिसे उस सिचुएशन को फेस करना पड़ता है या जिस पर वो सिचुएशन बीतती है वही जानता है कि वो भूल सकता है या नहीं। और ये हम सबके साथ होता है, जब हमारी जिंदगी में कोई भी एक ऐसी प्रॉब्लम आती है या कोई भी एक ऐसा फेज आता है जिसे फेस करना कठिन होता है, तो कोई कितना भी हमसे कहे भूल जाओ या ना भूल जाओ, या आप जानते हैं कि आप उसे आसानी से भुला सकते हैं या नहीं, राइट? सो किसी से भी कहने से पहले एक बार खुद को उस जगह पर रखकर जरूर सोचिए। इसी बात पर आइए आगे बढ़ते हैं एक और गाने के साथ। स्टे ट्यून्ड, आपका अपना सुबह का ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस।

व्हाट हैपेंस एंजॉय कर रहे हैं आप रेडियो प्रस्वानी पर और आपके साथ इस बेहतरीन सफर में, सुबह के बेहतरीन सफर में एक बार फिर से सताक्षी है। जिंदगी दिन इन दोनों को बेहतर करना हम और आप हम सब चाहते हैं, मतलब सिर्फ दिन की बेहतरी से शायद बहुत सारे लोग राजी ना हो, क्योंकि हर दिन बेहतर हो यही सब चाहते हैं, हर दिन खुशियां हो, हर दिन आपका जो है वो हैप्पीनेस के साथ बीते आप यही चाहते हैं। सो एक बहुत अच्छी चीज है, एक बहुत काम की चीज है और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, हालांकि उसे अपनाना जरा मुश्किल है। देखिए जिंदगी में डिसबैलेंस तब आता है जब आप किसी से उम्मीद करते हैं, और अगर उम्मीद सिर्फ खुद से ही की जाए, दूसरों से ना की जाए, तो शायद वो जो रोज का स्ट्रेस है आपका, हर दिन मिलने वाला स्ट्रेस, आप उसे आसानी से रिलीज कर सकते हैं, आप उससे आसानी से बच सकते हैं, राइट। उम्मीद जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत ही प्यारा सा शब्द है ये उम्मीद, और आपको जीने की वजह दे देता है, लेकिन उम्मीद किसी और से नहीं, खुद से कीजिए। आइए हम भी अब एक गाने की उम्मीद लगाते हैं, और जो उम्मीद आपने लगाई हमसे मुझसे भी जरूर पूरा करेंगे। फिलहाल ये अगला ट्रैक एंजॉय कीजिए इसे और सुनते रहिए इट हैपेंस, सताक्षी आपके साथ है।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो, जां 132 ANT, यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है, ऑथराइज्ड बाय द
3: पाकिस्तानी 1701 AM पर। आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस, और इट हैपेंस में इस वक्त हम हैं गानों की हैट्रिक में, यानी कि तीन बैक टू बैक ट्रैक्स के साथ। तो चलिए आज के गानों की हैट्रिक का ये पहला ट्रैक एंजॉय करते हैं।
4: तेरे

0: वेलकम बैक रेडियो प्रस्वानी 1701 एम्पर सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं गानों की हैट्रिक। गानों की हैट्रिक का ही लास्ट ट्रैक आ रहा है आपके लिए, एंजॉय कीजिए इसे और सुनते रहिए इट हैपेंस सताक्षी के साथ। इट हैपेंस में अभी बहुत सारी बातें और बहुत सारे गाने हैं जो आपको बताने हैं, सुनाने हैं, सो कहीं मत जाइएगा, हमें सुनते रहिए और यूं ही बने रहिए रेडियो प्रस्वानी पर।
1: इश्क और मोहब्बत की दुनिया में रुतबा है मेरे प्यार का, चारों तरफ जलवा है मेरे यार का।

0: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading
1: Containers for Change
0: के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिनकॉइन कहते हैं। अपने बिनकॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर आप हैं सताक्षी के साथ आपके अपने ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस में। कहते हैं कि अगर आपको किसी को पहचानना है, जानना है, तो उसके साथ ट्रैवल पे निकल जाइए या फिर उसके साथ दिल खोल कर बातें कीजिए, उसकी बातें सुनिए, एक अच्छे लिसनर बन जाइए। लेकिन कभी कभी आप खामोश रहकर भी लोगों का असली रंग देख सकते हैं। आपकी खामोशी से किसे फर्क पड़ता है, किसे नहीं पड़ता है और किसे कितना पड़ता है, ये आपको पता चल जाता है जब आप चुप हो जाते हैं, आप खामोश हो जाते हैं। तो जरूरी नहीं कि किसी को जानने के लिए आपको उसके साथ वक्त बिताना जरूरी है। कभी कभी चुप रहकर भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सामने वाला आपसे कितना इन्वॉल्व है, कितना अटैच है, या आपकी खामोशी का उसे कितना फर्क पड़ता है। चलिए इसी खामोशी के नाम ही अगला ट्रैक सुनते हैं। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी, सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस।

वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग रेडियो ब्रिस्बेन 1701 एम पर आप हैं सताक्षी के साथ और ये है आपका अपना ब्रेकफास्ट वाला शो। जी हाँ, आपका अपना मॉर्निंग वाला शो इट हैपेंस। सुबह की एक खास बात होती है, ये सुबह का साथ जो होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। एक तो आपकी जिंदगी में आपको एक नया दिन मिला होता है, जिंदगी में कई नए सपने मिले होते हैं और उसके साथ साथ मिला होता है अपनों का एक और साथ। बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनको शायद वो साथ नसीब नहीं होता है, शायद वो साथ नहीं मिलता है, लेकिन बहुत लकी हैं वो लोग, वो सभी लोग जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं या नहीं भी सुन रहे हैं, जिनके साथ वो प्यार वो साथ है और एक और दिन वो अपने परिवार के साथ अपने अपनों के साथ स्पेंड कर पा रहे हैं। कल क्या होगा इस बात की भी खबर नहीं है क्योंकि कल भी किसी ने नहीं देखा है। सो आज ये जो दिन है यही आपके पास है, इसकी खूबसूरती आपके पास है और इस दिन को आप अपनों के साथ अपने साथ जरूर बिताएं। इसी विश के साथ एक और गाना यहाँ पर प्ले करूंगी। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्बेन, सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस।